0: Affairs Minister Margus Schachner in Tallinn. The two leaders yesterday discussed ways to further strengthen India-Estonia cooperation in trade, investment, digital transformation, cybersecurity, and emerging technologies. They also exchanged views on creating new opportunities following the successful conclusion of India-EU Free Trade Agreement negotiations. Addressing the India-Estonia Business Forum in the presence of Mr. Schachner, Mr. Goyal said, combining India's digital capabilities and scale with world-class manufacturing supported by the India-EU FTA framework can further boost bilateral ties and strengthen the India-EU partnership. In badminton, star Indian shuttler and two-time Olympic medalist PV Sindhu will face world number 4 Shen Yufei of China in the women's singles semi-finals of Japan Open in Tokyo this morning. Sindhu advanced to last 4 after former world champion Nozomi Okuhara of Japan withdrew from their quarter-final match yesterday. In FIFA World Cup, European rivals France and England will lock horns in the third place playoff match at the Miami Stadium tonight. The match is scheduled to begin at 2:30 a.m. Indian Standard Time. The third place playoff match has been part of the World Cup since 1934, the second edition of the tournament, with the 1950 edition being the only exception. And that is the end of this news bulletin.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: লাকে আকাশবাণী ডিফু জয়মেকে বাংলাকে FM প্যান লং প্যান মেগা হার্স ফারই সিরাটক বরাসের ক্যাপ লাপে নিউজ অন AIR মোবাইল অ্যাপস লং প্যান টানাং লিটুম জয়মেক আরজুইক লংজি নন স্টুডিও ঘুরিয়ে পর ফাই ঠ্রগ্রা মিনিট ক্যাপা পর প্লেং টাংল লাসিন নদুন্থু কাংডু কার্ডমালুন জে রং ডেং লং প্যান অফ্রাংসি আলুন আরজুইক সেনাং বিউটি কিলিং পি লাপেন রিয়েসাং হতুম কিলন আলুন আলুনালামথে আদাপ্রাং আদাপ্রাং সাম্প্রী।

Αποχύτε σε καν με τσίτε μπαγκόν.

सिंह में चीते बैंकों पोचीते के अरुणा जिंग बैंग लालों जामू सिंह जिर जी हान लिंग

शरणं निरदेदो अन पोतारादो अन मिंता निरुंजं नंलो थामुमं सिंकान मेदमारं अन पोतारादो अन Bang-yan-ta-run-jang, chi-lo-ang-di-jang Bang-yin-king-po-re-lang, ba-lo-ong-re-an Bang-po-ta-ra-do-an, me-ah-ong-ling-dam Bang-chong-ni-am-pang, si-yan-ta-si-im-bang, pa-ling-lu-char-nam

มังสิงการเมตมารังบางยันตาสิมยังบางพาลิงลูกจารณ์

कांग ब्यांग बोलोन लांग सोम सेम जंग बांग सेंग वेर थू लांग

정수와라잔 방무망선세랑선세가빵장 라선세내리땅띠리라정강장땅불론란

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय से पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज

0: छात्रावास के इस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौत की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया है। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन यूफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद सेमीफाइनल में पहुंची हैं। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय संजय मट्टू। Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated 75 redeveloped railway stations across 20 states from Jalandhar in Punjab last evening. These stations have been modernized under the Amrit Bharat Station Scheme, which is one of the world's largest station redevelopment programs. Developed at a cost of about 1,570 crore rupees, these stations have been transformed into modern passenger-friendly facilities. Redeveloped in the spirit of Virasat Bhi, Vikas Bhi, the stations incorporate elements reflecting the local culture, heritage and architecture. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, the inauguration of the 75 redeveloped railway stations reflects the rapid transformation that Indian Railways has undergone over the past few years.
2: बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है।
1: Earlier in the day, India got its first hydrogen-powered train when Prime Minister Modi flagged the passenger service from Jind railway station in Haryana. The train will run between Jind and Sonipat railway stations and cover the 89-kilometer distance in 2 hours. Union Home Minister Amit Shah will today visit the BSF's 18th Battalion Border Outpost at Jumagach in West Bengal, located near the India-Bangladesh border. Mr. Shah will interact with BSF personnel, address a Prahari Sammelan, participate in a plantation drive, and inaugurate and lay the foundation stone for several BSF-related development projects. The Union Home Minister reached Baghdogra Airport in Siliguri last night on a 3-day visit to West Bengal. Mr. Shah was received by West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari on his arrival at the airport. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal met Estonia's Foreign Affairs Minister Margus Tsahkna in Tallinn. The two leaders yesterday discussed ways to further strengthen India-Estonia cooperation in trade, investment, digital transformation, cybersecurity, and emerging technologies. They also exchanged views on creating new opportunities following the successful conclusion of the India-EU Free Trade Agreement negotiations. Addressing the India-Estonia Business Forum in the presence of Mr. Tsahkna, Mr. Goyal said combining India's digital capabilities and scale with world-class manufacturing, supported by the India-EU FTA framework, can further boost bilateral ties and strengthen the India-EU partnership. The Ministry of External Affairs has said discussions between India and Japan on the Mumbai-Ahmedabad high-speed rail project are progressing well. Replying to a question regarding a social media post related to the project, the External Affairs Ministry spokesperson Ranthir Jaiswal said, the post reflects an individual opinion and is at considerable variance with the facts. Briefing the media in New Delhi, he said Japan will provide the

0: pudode loan bu bang nang lodun lo amar everest tumang nang putu lo enosli chawanu mat enosi bang hang lo enosi tamen nang chipidun dalo amanili everest long patudun bom lo 5 6 months an juidun lo amar everest tumta koson pen koson ne a club bang sono puji khela bang enunede deti ke tournament ke thitame enunede lo amar non ta dolang mani ha club bang staminili arjuga dulong e amar अक्ला बंग इंसाम्बली सुन लो यो इनके प्रैक्टिस ग्राउंड टा वे इनके ला तुम के लटा गोल्फ कॉलेज से प्रैक्टिस नहीं दी के गोल्फ कॉलेज जोंग टा प्रैक्टिस अवेलेबल टीला है क्रिकेट तुम सिद्ध ओ टीला है अम्मा अपनी लंग मन नीली बंग मत हालो जोंग सी नीले क्लब के मिशन लॉन्ग ले पुत्ते या कंग तुई बंग के आलू दून उन एरे बबन पहले है अम्मा After 1 week of pits, Singhason FC bah, lapu long need not. Singhason FC butum ne nipanang contact long. Nipanang pulo lada klik nang patu dunite loan cewan non. Inke sono puji munang tumpan mes fee tami nang mune nang pidat po. Lasi lada le club bang join pinu pelah. Amat nili radak pen NOCC cepon pin lo he. NOC pon si Singhason long judun lo patu dun lo. Lapen hai jalo hai inke experience tame long dun olo ke the dum men pathu dun senior men pathu dun ke lapen li da ke pathu dun cheng pen champion mang ni rong lo je nili chebor ye teng pen success as a long long media age the adim long ke Singhason FC bu pen nili league age the na ke ladak si ke pathu cheng long di arlinga do peak lapen canover side pen dang lok lo hai lapen experience am mission lo la that pen Singhason pathu that pen nili nipan hills na te long nang hang lo noc chewan non ladak le club nang join on pul hai athema jo nili ke mane kape kape club ang dam jam nang lak lo bon sita ni ta di fu pen long nit an ke practice jam unim je di inke hadak ke Singhason ne practice mane practice ग्राउंड दो इनके प्रैक्टिस मतलब मैं प्लेयर टमे दो आनी बैंकटा सिस्टम में नीली दख डिफूमेंट लोंग ने प्रैक्टिस का दाम रोने अथिनी ली क्लास दो इन क्लास पेन नंगले एतमया को हेलोविंग मच दियो आ जाके नसी मोहनली तमे देर उप इनके लो चलांगा पोर्ट आवेदत पो पुलो इनके लाय मथा लो जत लो इनके डा सिंगासोन ना मैनेजर पेंचिंग की दत लो हियस तुम नहांग दत लसी मु नली तुम खिला तमे नहांग नो नीली बैंक पो के जॉइस तमे बैंक पो सिस्टम में नोन बैंक एनो सिंग पिता नीले दख हियस लोंग पथु दुन लंग बेल है अमा nei hills long bang lo la da bang ke practice ground do coast tam mi pick mission ani ak long mesalang tam nang ke than jong se lang nang ke than tiang than sip player man nei bu se lang liga ni wang tam mi nang ke than la si dak wang lo club tam mi la dak mission lo player tam mi pick pick aning mission sen ching mane chingki pun che than pun lo he yo ke la lo ke lik tam mi dak si dak pan da jui lo pathu lo experience ai mi dun sen sen lo ke la coast tam mi खाइलो मोरीगाव तहो नने विश्वनाथ तहो लाई तमे खलनांग पोन उल है इनके को नने आई लीग प्लेयर मन मे छ फॉलो निग्रु दो मन मे छ फॉलो निग्रु दो मने थेलोंग लक तिनी के फर्स्ट टाइम दि थेलोंग है कफिरेलो मींस थिउ उ बु रे मुन चोरी बु बेले है अमा कोस्ट मन नंग पुलो नंग फिरेरोंग त हायन इलो मने लो इनके कोसोन मे ओसोने हाय ता हाय दे सोनी है हाय ता हाय दे लो इनके इनिंग बैंग सोनो पुचे थेलो जेनी तुम छ बोर इते उंजी बे गिव अप इते चोकलो बेले है सिनेले गिव अप एलो छ पाटा छ पाइलो इनके लालो जो किनेली हिल्स के जॉनमेन के सीपन के निमेथांग छ माथा पेने है नीली हिल्स के जॉनमेन के निभा के मे सोनो जो अथे सोनो पुजी हिल्स के जॉनमेन सिने ने गेम दा माने चिन प्रूफ लो अकोस्टा मे के मिशन के लॉन्ग लो प्लेयर डोमेन तमे के थे प्लेयर डोमेन तमे चिनी लो केनोला मार्बेला एफसी पु है स्पेन है लडाख ता निकेला हिल्स पेंसी कि दुलोंग लो हिल्स अक्ला पेंसी निया डाक मार्बेला तमे के पथु दुन माने हिल्स मानसी ने के रिप्रेजेंट दुन है लालो जो लडाख पेंसी मार्बेला तमे काडू दुन माने मार्बेला तमे नन दाम लोंग पो घात ला स्पेन है लालो जो
1: नंगली हिन पेन नन ओवे कि मिय तोम फान कॉपी पी थान पाचिनी पोनिंग तुम
0: लालो नीली पुजी पो लालो ओ ओवे चिंग थुर और ओवे कि मी अ तुमा फान के कि पुजी पो लालो जे नंगली तुम गिव अप री लाइफ लोंग के केरेम के हाय के दो बम लसी यंग तुम हाय जत लुपते आंसर से छ बोर इनो रेम दे तमे आंसर से छ बोर इनो अथेमा फेलर इज द पिलर ऑफ सक्सेस बुदो लसी तुम केरेम एन सी के हाय मने के हाय पो लालो लपे नली तुम अदा और रोंग के दो और टाउन के दो तमे हे दी अदा ट्रायल के वांग बम कासा लोंग हे दी कासा और वेस्ट कार्बियन लोंग तमे नहक तमे ट्रायल के वांग बम लसी ट्रायल बंग के पिदुन वेग नोन अथेमा नंग तुम दा रोंग लोंग पथुरे टाउन लोंग पथुरे के कांग तुई बंके लेदुनी चांस बंके अवे लडाक ट्रायल बंग पिदुन बम नन अथेमा ट्रायल वांग पुलोते लाके कांग तुई क्लब और कांग तुई यंग तुम आंग देंग अन के दुनी चांस दो नीली तमे ट्रायल पिदुन बम लो बिहेक पेन मोर देन 20 क्लब्स बक दोलो ने फनका रिजेक्ट आंग तमे नन अडाक मरबिला बंके लोंग लोंग उन चिलो सिला सोंदाक तक सिनली तुम तमे चे बोर इन नन लडाक नंग तुम ए फोंग फोंग नी ट्रायल लोंग का रिजेक्ट पेन नंग तुम गिव अप दैट फुटबॉल बंग इरी बुप तंग हो और जस्ट

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: लाके आकाशवाणी डिपो जय मे के बांगला के FM बेनालोंग पेन Megahertz Pharoi Siratok Borasirke Lapen News on AIR Mobile Apps Along Pentanang Litum Jaimek RJ Longji Nonaduntu Lun Chito Angdeng Along Pen Aprangsi Alunjir RJ Xenang Karbi Cultural Society Atum Kilonalun Alunalamte Lahenlo Nitumarong

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
4: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
3: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
4: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
3: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय

0: कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन 3 परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का पहला चरण है। इसके अलावा हाटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं यह कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से यह कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो पूरा क्षेत्र है, ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनिया

0: या व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
1: Working to strengthen each other's
2: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
0: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
3: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है, और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था, बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था। तो मैं वापस गया अपने कमरे में, जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाया।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम 4 में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
5: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
6: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी तकनीक, पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या यह है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने SIR से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, SIR में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया।

वर्षाकी मी चेन्दुनिक था लद्दाख आकाशवाणी दिफुअलंग आसन आसन कपचे थैंग वर साइडो लबांग सुंग बंग माई मीटिंग पांगरी पांग दोन महांग के थे किथि के जांग के जोर के नाम कुलारा की मिकांगपू हेम की मिकांगपू चुजुन चमांकान रोंग केयर आरोंग अजे बिहू क्रिसमस निंकान की मिया हिरजुमी लपेन अनपार्टा कप्रेक आसन आसन आलाम पचे थैंग जी लिपुते लद्दाख आकाशवाणी दिफुअलंग नंगहुमरी इक्तामी मोबाइल पेंजोंग सी चिंकी इक ची पुलोते मोबाइल नंबर के 9476880085 लापेन 9101008242 हेनलो

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लाके आकाशवाणी डिपो जायमे के वांगला के एफएम बेना लोंगपेन मेगाहर्स फारो इसिरा टक बरा सिरके लापेन न्यूज ऑन एयर एपा लोंगपेन तानांग लितुम जायमे आरजे लोंगजी नना दुनतु हिंदी डेड लोंग रीचिंग होनालु नांग देंग लोंगपेन अफ्रांसिया लुन आरजे सेना आशा भोसले किलुना लुन आलुना लामथे ये धरती हिंदुस्तान की बालन आरजे सेना लबांग सोलुन।

महाराष्ट्र तेरा, वो कहे गुजरात मेरा, एक का पंजाब घर है, एक का मद्रास डेरा। आग में जलता बिहार, जोश में बंगाल है, उस तरफ देखो के सरहद पर खड़ा भोचाल है।

मत करो टुकड़े वतन के, मत बनो फिर से गुलाम। एक दिल हम, एक लौ हम, एक हमारी सुबह शाम। रंग कितने ही हमारे, एक मगर तस्वीर है जो हमें बांधे वो।

लपाना पौना लेतुम। आशा भोसले किलो नालुन ये धरती हिंदुस्तान के पालन आर्जुक लॉन्ग तांगलो आडुंठ आलुन आर्जुक सुसेनांग आशा भोसले पहले थॉट किलो नालुन आलुन अलम थे सबरमती कसेन पालन आर्जुक सेनांग लबांग सालुन।

0: की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: लगे आकाशवाणी डिपू नॉन स्टूडियो घुरिया पर पोरफाई सिर कैमरा मिनिट प्ली कैमरा ट्रक पर प्रेंटांग लसिनो नदुंथु इंग्लिश अलुन जियर आंग देंग अलोंग पेन फ्रांसी अलुन आरजिक सेना मेडोना किलोन अलुन अलुन लामथे रन अवे लवर।

0: Lapuan apornang litum. English alun jirang deng along pen, asona sona lun arjuit long tala. English alun jirang dengke, lapuan se kang toniglo. Nang litum jai mek arjilong bomla ke, Akashvani Dipu station along pen.
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: इसलिए मेरा काम ठीक से नहीं हो रहा था। और जहाँ जहाँ पानी है वहाँ हर काम अच्छे से होता है, हर इंडस्ट्री, हर फैक्ट्री, हर सर्विसेज पानी के बिना नहीं होगा। टेक्नोलॉजी की बात कीजिए, आप खेती की बात कीजिए, किसी भी इंडस्ट्री की बात कीजिए, उसको कहते हैं वाटर फुटप्रिंट। बिना पानी का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो इसलिए पानी को लेकर मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें बहुत अच्छा लग रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। एंड बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने जल जीवन मिशन शुरू किया है। उनका जो सोच है जल संचय जन भागीदारी, इससे लोगों को ये चीज़ समझ में आया है कि नहीं, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, लोग इससे जुड़ रहे हैं और अपने अपने तरीके से, अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी के ऊपर काम कर रहे हैं। ताकि आज तक लोगों को लगता था कि गलतियां किसी और की है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हमारी खुद की जिम्मेदारी है जो हमें निभाना ही पड़ेगा।
1: वाह, बहुत ही जरूरी बात आपने बोली है, जो जनता की भागीदारी की बात बोली। मुझे ये बताइए कि ये जो फील्ड है, ये जो मुहिम है, ये आपने कब शुरू की, इसका कारण क्या था और इसकी उपलब्धियां क्या हैं?
0: ये कब शुरू की थी बोलूंगा तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। मेरा मेन पैशन था कि पेड़ लगाऊंगा,
1: अच्छा,
0: एंड 2010 से मैं बहुत पेड़ लगाया, एंड गिनते गिनते एक बार पहुंच गए कि 80,000 पेड़ लग गए
1: क्या
0: पाँच
1: बात है
0: सालों में।
1: जी।
0: लेकिन 5 सालों में, 2010 से शुरू किया था, 2015 तक 80,000 पेड़। कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है कि कोई
1: जी
0: बोले कि वाकई यहाँ तो लोग करोड़ों पेड़ लगा रहे हैं, बट उस 80,000 में से 40,000 पेड़ ऐसे ही मर गए। मैं जब
1: ओ
0: गिनना शुरू किया पता चला पेड़ में, क्योंकि पानी नहीं मिला उसको, या तो कभी सूखा पड़ जाता है या ज़्यादा पानी आ जाता है, पेड़ मर जा रहे हैं। अब एक पेड़ में ज़्यादा पानी गिरेगा तो भी मर जाएगा, कम पानी गिरेगा तो भी मर जाएगा। तो मैंने ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं पेड़ लगाना चाहता हूँ तो हमें पानी का पहले बंदोबस्त करना ही पड़ेगा।
1: जी।
0: चाहे एक किसान हो, जो भी हो, जो भी पेड़ रिलेटेड काम करता हो, चाहे वो एक चावल ग्रो कर रहा हो या शुगर ग्रो कर रहा हो या फल ग्रो कर रहा हो, कुछ भी, पानी बहुत ज़रूरी है। चाहे हम जैसे लोग पर्यावरण प्रेमी लोग जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं, आज जैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन है एक पेड़ माँ के नाम, तो तब मेरे सोच में आया कि हमें पेड़ लगाने से काम नहीं होगा, हमें पानी लगाना पड़ेगा।
1: वाह,
0: तो ट्री प्लांटेशन मत कीजिए, मैं लोगों को बोलता हूँ, आप वाटर प्लांटेशन कीजिए। आप ये सोचिए कि पानी कैसे होगा, क्योंकि बारिश के समय हर जगह हरा भरा हो जाता है अपने आप, क्योंकि पानी रहता है। वाटर इज ब्लेसिंग्स, एंड हमारा ही एक पृथ्वी ऐसा जगह है जहाँ पानी है, इसलिए
1: जी
0: हम हैं यहाँ पे। आज अगर चांद पे पानी होता तो मैं गारंटी देता हूँ कि आज पर अभी समय हम लोग चांद पे बैठ के बात कर रहे होते, पृथ्वी में नहीं बैठे होते। तो पानी यही है और हमें यहीं पे पानी का संरक्षण, सबसे ज़्यादा परम संरक्षण पानी का ही संरक्षण है इस समय।
1: तो ये तो तय हुआ कि आपने कैसे शुरू किया,
0: जी,
1: कब शुरू किया और उपलब्धियां क्या हैं इसकी?
0: उपलब्धियाँ तो हो गई है, मेरी उपलब्धि नहीं है, लोगों की उपलब्धि है। शुरुआत 2015 से हुआ, जब मैंने एक सोच निकाला कि पानी व्यर्थ बहुत जाता है,
1: जी।
0: चाहे शहर हो या गांव हो, हम सब नहाते हैं। एंड मौका मिला बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का, मौका मिला बहुत साइंटिस्ट से बात करने का, थैंक यू IITs, एंड काफ़ी रिसर्चर्स थे। तो ये पता चला कि घरों में जो पानी होता है, किसी को बोलूं पीने का पानी को आप पेड़ में डालिए तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि पीने का ही पानी नहीं है तो पेड़ को कैसे देंगे, क्योंकि यही बात अक्सर होती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तब माइंड में आया कि नहाने का पानी तो व्यर्थ जा रहा है, और घर में जितने भी पानी का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 40% पानी नहाने में चला जाता है एंड 30% पानी फ्लशिंग में चला जाता है, टॉयलेट्स में। टॉयलेट का पानी रीयूज करने के लिए बहुत मेहनत है, बहुत खर्चा है, बट नहाने का पानी एक ऐसा पानी है जिसको हम आराम से फिल्टर करके रीयूज कर सकते हैं। चाहे आपको फ्लशिंग में यूज़ करना हो, या पेड़ पौधे में देना हो, या टॉयलेट धोना हो, या बहुत सारे, इसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं नॉन ड्रिंकिंग पर्पस। तो इस चीज़ को लेके मैंने एक जल तारा इन्वेंट किया, डिज़ाइन किया,
1: जी
0: एंड थैंक यू, उसमें एक पेटेंट भी मिला मुझे। एंड पता चला कि पेटेंट करना बेटर है, नहीं तो कोई दूसरा उसको कॉपी करेगा और उसका पैसा लगा देगा। तो मैंने ऐसा एक डिज़ाइन बनाया है कि आप कोई कॉपी नहीं कर सकता, और ये फ्री फॉर ऑल है कि
1: अच्छा,
0: हर इंसान अपना नहाने का पानी उसमें डाइवर्ट कीजिए, उसमें फिल्टर कीजिए और तुरंत इस्तेमाल कीजिए उसको। नॉन स्टॉप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप नहा रहे हैं तो मतलब आपके पास एक्स्ट्रा पानी है। हर इंसान को एवरेज कम से कम 30 लीटर पानी चाहिए, और कोई अगर शावर से नहा रहा हो तो डबल हो जाता है, 80 लीटर से 100 लीटर पानी इस्तेमाल हो जाता है। तो इसीलिए मैं लोगों को बताना लगा कि आप ये कार्य करना शुरू कीजिए, मैजिक ड्रम इसको।

0: मुझे ये बताइए कि ये जो बारिश के दिन हैं, इनमें सबसे जरूरी गतिविधि क्या है?
1: देखिए, बारिश भगवान का आशीर्वाद होता है।
0: क्या प्यारी बात बोली आपने।
1: चाहे आप कुछ भी दुनिया का एक्टिविटी हो, कोई भी, रोटी, कपड़ा, मकान से भी पहले पानी आता है। आप बिना रोटी के थोड़े समय तक रह सकते हैं, बिना कपड़े के तो आराम से रह सकते हैं, बिना मकान के रह सकते हैं, बिना पानी के 4 घंटा नहीं रह सकते। तो इसलिए कोई घर में आता है, दुश्मन भी हो, पानी हम जरूर पूछते हैं,
0: बिल्कुल
1: खाने के बारे में नहीं बात करते हैं। तो सबसे पहले पानी है। जो भी गतिविधियां हैं दुनिया में, जो भी हम काम कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि पानी को एक विशेषता दिया जाए, पानी के बारे में चर्चा हो और हर इंसान को पता हो कि पानी प्रथम है, पहला टॉपिक शुड बी वाटर। तो इसलिए इस पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जो लाइफ लॉन्ग काम कर रहा था, मैं ये रियलाइज़ किया हूँ कि हर चीज़ पानी से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि पानी नहीं था,

0: चली कहते थे। फिर धीरे धीरे इसका नाम पड़ गया जल तारा, क्योंकि हम ये घर का पानी इसमें डाइवर्ट करने लगे एंड नॉन स्टॉप ये पानी इस्तेमाल करने लगे। लोगों को बहुत अच्छा लगा एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। किरण बेदी जी हैं जो बहुत ही वेल नोन फिगर हैं, तो उनको ये आइडिया अच्छा लगा था, उन्होंने देखा था। एंड कई सालों बाद जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमें जल संचय करना है, जन भागीदारी ज़रूरी है, जल जीवन मिशन जब शुरू हुआ, तो उन्होंने किरण बेदी मैडम ने इस कॉन्सेप्ट को जल शक्ति मंत्रालय को ट्वीट करके बताया कि ये
1: जी
0: देखिए ये मुखर्जी हैं, ये बहुत बढ़िया एक आविष्कार किए हुए हैं, आप लोग ये लोगों तक पहुंचाइए। वो एक दिन है, और जब प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में बताया, मुझे जल शक्ति मंत्रालय बुलाया गया, उन्होंने ये सिस्टम देखा, उन्होंने इस बारे में बहुत सारे पोस्टर्स, और उन्होंने चारों तरफ लोगों को बताना शुरू किया कि ऐसा करो। क्योंकि सोच यही है कि एक, अगर हम चाहते हैं कि आज अगर देखा जाए तो 150 करोड़ आबादी में, मान के चलता हूँ हमारे देश का, हर इंसान को जोड़ना हो तो 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। एक है कोई भी कार्य इजी होना चाहिए, आसान होना चाहिए लोगों के लिए। दूसरा, कार्य सस्ता होना चाहिए, मैं बोलूँगा लाखों रुपए खर्चा होगा लोगों को पसंद नहीं आएगा। एंड तीसरा, क्विक होना चाहिए। मैं ऐसा कुछ काम बोलूँगा कि 2 महीना चले काम ही चल रहा है, बढ़िया बिल्डिंग बन रहा है, फैक्ट्री बन रहा है, कुछ ऐसा इक्विपमेंट बन रहा है, तो लोग इसमें लोग जुड़ेंगे नहीं। एंड उसी समय स्वच्छ भारत अभियान, तो लोग उससे भी एक प्रेरणा मिला कि जब करोड़ों लोग जुड़ सकते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी एक ऐसा काम करूंगा जिसमें हर इंसान अपने हिस्से का पानी बचाना शुरू कर दे। तो इसीलिए ये गैजेट टेक्निक बनाया गया, जल तारा, जिसमें लोग जुड़ने लगे, अपने तरीके से खुद ही इसको इंस्टॉल करने लगे। एंड देखा जाए तो इसमें कोई भी खर्चा नहीं है किसी का।
1: अच्छा
0: यही है कि जैसे मैं थोड़ा आलसी इंसान हूँ, मैं खुद तो काम करूँगा नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि कोई खड्डा बना दे तो कोई लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, पत्थर चुन के लाऊंगा नहीं, भाई कोई पत्थर चुन के ला दो, तो मटेरियल लेके आओ। एंड उसको इम्प्रोवाइज़ करते करते आज ऐसा एक डिवाइस बना दिए हैं कि आप खुद ही बना सकते हैं, नहीं तो आप किसी और से करवा लीजिए। एक अच्छा स्टैंडर्ड करना है तो 5,000 में काम हो जाता है, लेकिन जहाँ लाखों किसान आज हमसे जुड़े हुए हैं वो खुद ही कर रहे हैं, वो बस हमसे एडवाइस लेते हैं, मैं उनको सिखाता हूँ। हमने कॉल सेंटर शुरू किया है, RWH इंडिया हेल्पलाइन, जिसमें लोग ईमेल करते हैं, उनको फोटो वीडियो के साथ इतना सारा भेज देता हूँ कि आज मुझे बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है कि 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इन वीडियोज़ और फोटोज़ को देख चुके हैं, सोशल मीडिया में भी बहुत जगह डाले हैं, उन लोग भी इससे देखते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं। डेली 300 से 400 लोग हमें ईमेल कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं एंड कमेंट्स कर रहे हैं, जिसको हम लोग नॉन स्टॉप गाइड कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत यूज़फुल हो गया है हम सब के लिए, एंड सब लोग जुड़े हैं, यही हमारे लिए एक खुशकिस्मती की बात है।
1: जी, आपने हेल्पलाइन की बात की तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी हेल्पलाइन का नंबर या कांटेक्ट का जरिया बताएं, ताकि जिन लोगों की जलतारा में दिलचस्पी है वो इस बारे में पूछताछ कर सकें और नजदीकी लोगों से जुड़ सकें। ये तो हुई एक बात। दूसरी
0: जी
1: बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन से आपकी इस मुहिम के साथ जुड़कर काम करना चाहे तो उसका क्या तरीका है? इन दोनों सवालों के जवाब दीजिए।
0: जी पहला तो ये है, RWH इंडिया हेल्पलाइन जो एकदम ही फ्री सेवा है, जिसके लिए हम लोग कोई पैसा नहीं लेते। हम लोग 8 जन हैं जो जियोलॉजिस्ट हैं एंड जो सिविल इंजीनियर्स हैं, जियोलॉजिस्ट एंड सिविल इंजीनियर्स, वो भी अपने तरफ से देश का सेवा कर रहे हैं। एंड कोई भी हमें ईमेल करता है, हम लोग पहले समझते हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपके भौग ज़मीन का क्या सिचुएशन है, आपका टेरेन कैसा है, आपके यहाँ पानी कितना बरसता है, आपका ज़मीन का साइज़ कितना है, छत कितना है और पानी का उपयोग कितना है, यही सब चीज़ें हम लोग उनको बोलते हैं। ईमेल कीजिए हमें, waterheroofindia@gmail.com एक मेल बनाया है जिसमें लोग ईमेल करते हैं, उनको हम लोग रेस्पॉन्ड देते हैं हमारे इंजीनियर्स बैठ के, और उनको पूरा डिज़ाइन डायग्राम के साथ सिखा देते हैं कि आप लोग ये स्टेप कीजिए और आपका काम हो जाएगा, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा। एडिशनली अगर आपके पास फंड्स हैं, चाहे 1,000 रुपये हो, 2,000 हो, 3,000 हो, क्योंकि हमारा कोई भी काम 2-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा के खर्चे का नहीं है। क्योंकि पहले ज़माने में जब भी हम जल संचय की बात करते हैं या वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, हज़ारों के लाखों में बिल जाता था। अब जब आप कोई बात बोल रहा है कि ये तो 2 लाख खर्चा होगा, मैं बोलता हूँ 2 लाख छोड़ छोड़ दो, 2,000 में हो जाएगा। कोई बोलता है 3 लाख खर्चा होगा, मैं बोलता हूँ भाई 3,000 में हो जाएगा। तो लोगों को फिर ये बात समझ में आने लगी। एंड जब लोगों को कॉन्सेप्ट में क्लियर करना शुरू किया कि जल संचय का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वाटर कंजर्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, लोगों को क्लैरिटी, जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया, एंड लोग खुद ही करना शुरू कर दिया।

0: तो ये है। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट जो हमारे पूरे देश में एक कैंपेन चल रहा है, कई ऐसे न्यूज़ आए हमारे पास। न्यूज़ ये आए कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा देती है कि आप लोग जल संचय कीजिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कीजिए, लेकिन वो पैसा यूज़ नहीं हो पाता है, वो वापस चला जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा खर्चा करने के लिए रेडी है अंडर CSR, लेकिन वो फंड यूटिलाइज नहीं हो पाता है, वो वापस चला जाता है। बहुत NGOs हैं हमारे देश में जो इस सब्जेक्ट को लेकर काम करना चाहते हैं, वो वापस चला जाता है, उन लोग कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि स्किल नहीं है लोगों में, क्या करना है ये नहीं पता। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सब जानते हैं कि हमारे पास पानी की कमी है, या दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है पानी बहुत ज़्यादा है, हम लोग डूब जा रहे हैं, यही दो प्रॉब्लम है, बीच का कुछ नहीं है। और सबसे अजीब बात क्या है, वही सेम गांव में पानी की कमी होती है और सेम गांव बारिश में डूब जाता है। तो सेम जगह में आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखिए, जून महीने में यहाँ इस शहर में पानी खत्म हो चुका है, लोग टैंकर के ही पानी से जीवित हैं, इतने लोग अस्पताल पहुंच गए हैं, पानी नहीं है, अभी गांव छोड़ के जाना पड़ेगा, शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। और ठीक 15 दिन बाद आप 15 जुलाई में आ जाइए और आप पूछिए कि क्या हालत है, बोले कि यही सेम गांव सेम आदमी पानी में डूब चुका है, उसको एक नौका ले आके बचा रहे हैं, अभी सारा घर भी डूब गया है। मतलब पानी की कमी नहीं है, पानी का मैनेजमेंट की गड़बड़ी है।
1: बिल्कुल
0: तो इसी को माइंड में रखते हुए हम लोगों ने जो RWH इंडिया हेल्पलाइन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्किल डेवलपमेंट जो इंडिया का जो कैंपेन चल रहा है, इससे प्रेरणा लेके हमारी कोशिश ये है कि हर इंसान को इसके ऊपर स्किल ट्रेनिंग दिया जाए। 7,400 लोगों को हमने ऑलरेडी ट्रेन किया है, हर गांव में हर शहर में, कोई भी सीखना चाहता हो कि जल संचय कैसे करें और जल संचय का सर्विस कैसे प्रोवाइड किया जाए, ताकि एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, क्लास 8th भी पढ़ा हो, क्लास 5th भी पढ़ा हो, उसको हम लोग सिखा रहे हैं कि आप जल संचय कैसे कर सकते हैं अपने गांव में अपने शहर में। आप लोगों को जाइए, बात कीजिए और आप खुद करके आइए, लोगों को एक तो आप सेवा तो दे ही रहे हैं, आपको कमाने का भी अवसर मिलता है। तो स्किल डेवलपमेंट का जैसे सोच है कि हम लोग ऐसे स्किल्स डेवलप करें जो हमारे देश में ज़रूरत है। अब जहाँ हमारे देश में जो बहुत सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो हमें लगता है, वो पानी की बचत, पानी को लेकर संचय करना, पानी का कैसे मैनेजमेंट करना, इसमें अगर स्किल डेवलपमेंट और क्लासेस हो सकें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने भी मुझे एक जगह दिया है PWD के हेल्प से, हेल्थ डिपार्टमेंट ने मलाड वेस्ट मुंबई में 7 एकड़ का ज़मीन उन्होंने अलॉट किया है, एक हॉस्पिटल प्रमाइसेज हैं, देश भर से कम 300-400 लोग हर महीने आते हैं मुझसे मिलने, जल संचय के अलग अलग विधि समझने के लिए, एंड उसी में लोग ट्रेनिंग लेके जाते हैं और अपने अपने गाँव में अपने अपने शहर में जल संचय करने का सर्विस प्रोवाइड शुरू करते हैं, जिससे बहुत
1: आपने
0: बड़ा
1: बताया
0: कार्य
1: कि
0: हो रहा है।
1: 7,500 लोग तकरीबन आपसे
0: सात
1: सीख चुके
0: हजार
1: हैं
0: चार सौ लोग
1: जी, यानी 100 कम है उसमें। क्या इसमें वो लोग भी हैं जो ऐसे इलाकों से हैं जहां बहुत कम बारिश होती है, जैसे राजस्थान का इलाका है या कच्छ का इलाका है
0: आप
1: या?
0: बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वही हैं ज्यादातर,
1: अच्छा
0: मध्य प्रदेश, यूपी, थोड़ा बहुत बिहार के एरिया जहां फ्लड होता है वो भी लोग आते हैं,
1: अच्छा वो भी
0: क्योंकि सेम ये मैं सोच लीजिए पैरासीटामोल दे रहा हूं लोगों को, हर
1: है।
0: चीज मैं बोलता हूँ पैरासीटामोल ले लो। पानी की कमी है तो भी आपको जल संचय करना है, पानी ज्यादा है तो भी जल संचय करना है, फ्लड आया है तो भी जल संचय करना है, तो इसलिए दो बीमारी है लेकिन इलाज सेम है।
1: इलाज सेम है और
0: हाँ
1: वो इलाज, मतलब उसकी मुहिम आप तैयार
0: बिल्कुल,
1: करें।
0: सेंट्रल महाराष्ट्र एंड हमारे ईस्टर्न महाराष्ट्र से, राजस्थान, गुजरात एंड बड़े बड़े म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लोग आते हैं, दिल्ली जल बोर्ड के लोग आते हैं, जिनका पानी विषय के लेके जो डिपार्टमेंट्स हैं। क्योंकि एक मैंने रियलाइज़ किया है कि क्योंकि मैं 22 अलग अलग स्टेट्स में काम कर रहा हूँ इस समय, तो हर स्टेट का क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या जुगाड़ हो सकता है, क्या वर्कआउट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो सबका थोड़ा थोड़ा मैंने देखा है, काम किया है। तो लोग कई लोग मिलने आते हैं समझने के लिए कहाँ क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम में किस किस किस आइडियाज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस में क्या फ़ायदा ज़्यादा होगा, किस में फ़ायदा कम होगा, और कम पैसे में जो काम हो सकता है उसके ऊपर हमारा ऑलवेज फोकस रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं DIY, डू इट योर सेल्फ।
1: यही तो जन भागीदारी है
0: बस जन भागीदारी का मतलब ही है DIY, ये आज
1: जी
0: मैंने आपसे बात करते करते ये मेरे माइंड में आया है, जन
1: जी
0: भागीदारी मतलब DIY। तो
1: जी
0: हमारा एक DIY किट है जल संचय के ऊपर, जो मैं सबको देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है हर चीज़, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ ना आप मुझे waterheroofindia@gmail.com पे मेल कीजिए, तो उनको DIY किट मिल जाता है, उससे
1: जी
0: उन लोगों का 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और उसमें फिर मेरा मोबाइल नंबर दिया रहता है, हमारे इंजीनियर्स का, लोग फ़ोन करके बात कर

0: सकते हैं। एंड एक इंजीनियर के पास 1,000 लोग होते हैं जिनको उन लोग सपोर्ट करते हैं, एंड वैसे वैसे हमारे इंजीनियर्स बढ़ते जा रहे हैं। और
1: जी
0: एक आपको खूबसूरत बात बोलूँगा, इस समय मेरे पास 8 इंजीनियर्स हैं अलग अलग भाषा में, क्योंकि
1: अच्छा
0: ऐसा बहुत हुआ है कि सबको हिंदी नहीं आती है, सबको अंग्रेजी तो नहीं आती है, बहुत लोग हैं सिर्फ गुजराती बोलते हैं, कन्नडा, तेलुगु, मलयालम के लोग हम ढूंढ रहे हैं अभी नए। सेवन सिस्टर्स से हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के लोग और जुड़े हमसे, एंड वर्क फ्रॉम होम भी हम लोगों ने शुरू कर दिया, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तो ऐसे लोकल लोग हैं, बंगाली तो मैं खुद बोल लेता हूँ, उसमें मैं ठीक ठाक समझ जाता हूँ, मेरी वाइफ इसमें जुड़ गई है, वो मराठी में लोगों को समझाती है, तो एक अच्छा चल रहा है, एंड लोगों का एक संतुष्टि है, लोग खुश हो रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कशन होता है, एंड बहुत एक खूबसूरत तरीके से पूरा देश आगे बढ़ रहा है।
1: वाह, किस तरह के बड़े बदलाव इस पूरी मुहिम के जरिए सामने आए हैं?
0: देखिए, एक कहते हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, उसको मैं हिंदी में कैसे बता सकता हूँ? इसका हिंदी वर्ड, एक एक कहावत है ऐसा कुछ, कि अगर आप समय पे चीज़ का इलाज कर लें तो बड़ा समस्या बन के नहीं आता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही
0: तो
1: है।
0: कोशिश ये रहती है कि जैसे ही हमें लगे कि पानी की कमी है, तो एक छोटा सा उपाय, जल तारा, एक बड़े समस्या को अंदर आने नहीं देता है, उसके पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं
1: समय रहते ये उपाय कर लेना
0: समय
1: चाहिए।
0: रहते ही।
1: जी
0: बहुत सही बताया आपने। तो कोशिश ये रहती है, जैसे एक एक देखते हैं, पूरा मोहल्ला डूब गया पानी में, अक्सर आता, पूरा गांव डूब गया, क्यों डूबता है ये हमने रिसर्च करना शुरू किया है।
1: पानी की निकासी ठीक नहीं है।
0: हाँ, क्योंकि हम लोग पूरे पानी को एक जगह जमा होने देते हैं। अब सोच लीजिए, हमारे सामने ही बहुत बड़ा टेबल रखा हुआ है, ये सोच लीजिए हमारा पूरा, कहते हैं मुंबई शहर के मान लेते हैं,
1: जी
0: हर शहर में आप देख के लाइए, एक ऊपर वाला जमीन होता है, एक निचली जमीन होती है। अब बारिश तो हर जगह सेम हो रहा है, ऊपर वाले जमीन पे बारिश हुआ है, वो सीधा बह के नीचे वाला जो सबसे जो लो लाइन एरिया है वहां पहुंच जाता है, तो वहां पे वर्षा जल निकासी नहीं हो पाता है। तो जल संचय एक वो तरीका है कि हर आदमी अपना पानी अपने घर में, एक स्कूल का पानी स्कूल में, एक ऑफिस का पानी ऑफिस में, एक प्लेग्राउंड का पानी प्लेग्राउंड में, एक मंदिर का पानी मंदिर में, मतलब हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स, ये उससे मैंने प्रेरणा लिया है।
1: मतलब हर जगह अगर पानी का इस तरह से संचय होगा तो जल भराव नहीं होगा और
0: बस
1: बाढ़ की समस्या नहीं होगी।
0: बस, और वो जमीन में जाएगा जो हमें काम आएगा,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: बहता हुआ पानी नदी में चला जाता है, समुन्द्र में चला जाता है। एंड बहुत बड़ी बात सोच ये है सर, मैं आप जो जो सुन रहे हैं आप समझिए, पहले हमें लगता था कि हम बहुत बड़े तालाब में पानी इकट्ठा करेंगे, हम लोग तालाब का पानी पीते थे, वो सूखने लग गया, क्यों? क्योंकि धूप बहुत तेज होता है। फिर हमने कुआं खोदा, लोग इतने हो गए कि कुआं सूखने लग गया, 50 फीट 100 फीट तक हम लोग कुआं खोदे हैं। उसके बाद हमने बोरवेल खोदा, बोरवेल हम लोग 200 300 400, कहीं कहीं तो मेरे पास फोन आता है 1800 2000 फीट नीचे तक बोरवेल से पाइप निकाल रहे हैं, बोर जो कहते हैं, अब वो भी सूखने लग गया, 70% से ज़्यादा बोरवेल सूख चुका है। लेकिन हमें लगता था कि जाने दो बोरवेल को, जाने दो कुआं को, हम लोग तालाब बनाएंगे, हम लोग बांध बनाएंगे, हम लोग नदियों को रोकेंगे। वो अपने जगह ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से इवेपोरेशन रेट बढ़ गया है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, भापीकरण,
1: वाष्पीकरण।
0: वाष्पीकरण, वाष्पीकरण के जब ये कॉन्सेप्ट देखा गया था, मुंबई मॉडल अक्सर बात किया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट में, देखिए मुंबई मॉडल कितना कमाल है, इन्होंने बड़े बड़े तालाब बनाए हैं, तालाब में पानी कलेक्ट करते हैं और हम लोग पूरा साल भर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ लोग भूल गए थे कि वाष्पीकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के समय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 27% वाष्पीकरण हो रहा है इस समय। तो ये वाष्पीकरण 2035 का एक प्रोग्राम इंडिया गवर्नमेंट लेके चल रही है कि उस समय जो सिचुएशन होगा, हमें 10 साल पहले लगना पड़ेगा।
1: एक तिहाई पानी भाप बन के उड़ जा रहा है।
0: जी, इस समय मुंबई में जो पानी की संकट है, पुणे में पानी की संकट है, चेन्नई में पानी की जो संकट है, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन रेट, वाष्पीकरण के
1: गर्मी बढ़
0: कारण
1: गई है।
0: गर्मी बढ़ गई। हमें लगता था, पहले लगता था 12% पानी उड़ेगा,
1: जी,
0: अभी
1: डबल से ऊपर
0: 23,
1: हो गया।
0: बिल्कुल यही हमारा प्रॉब्लम है। तो इसलिए अब तालाब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, हमें पानी जमीन के अंदर पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जल संचय का तालाब भी एक तरीका है, लेकिन जल संचय, तालाब का पानी उड़ जा रहा है, पानी जो जमीन के अंदर जाएगा वो कभी एवेपोरेट नहीं होता, आप 100 साल बाद भी निकाल सकते हैं।
1: इसमें बॉटम लाइन ये है कि पानी का ये संचय हम सबको करना होगा।
0: बिल्कुल
1: जो पानी की कमी का शोर मचाते हैं, जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जो पानी को वेस्ट करते हैं, सोसाइटीज, अस्पतालें, उसके

0: अलावा तमाम बंगलोज, ऑफिसेज, प्रार्थना स्थल, हर एक जगह पर लोगों की जिम्मेदारी है कि वो पानी बचाएं, वरना आने वाले कल में दिक्कत होने वाली है।
1: ये हर इंसान को अपने हिस्से का पानी, इसको मैं थोड़ा, आप जो बोल रहे हैं इसमें बस एक शब्द जोड़ दिया हूँ,
0: जरूर,
1: अपने हिस्से का पानी बचाइए, बस दूसरे
0: यस।
1: का मत सोचिए, अपना कर लीजिए तो अपने आप हो जाएगा सब
0: तो सब
1: काम।
0: अपने अपने हिस्से का पानी बचाएं, तो ये सारी मुहिम जुड़ के एक बड़ा बदलाव ले आएगी।
1: बिल्कुल, इसलिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं जल संचय जन भागीदारी बहुत
0: जी जी
1: जरूरी है।
0: बिल्कुल
1: हम
0: बिल्कुल
1: लोग, क्या लगता है हर दूसरा आदमी करेगा, म्यूनसिपलिटी काम करेगी, कलेक्टर साहब काम करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब का काम है, हमारा काम नहीं है, डीएम मैडम का काम है, ऐसा नहीं होता है। हम सब का, हमारा पानी हमारा घर, हमारा पानी हमारा स्कूल, हमारा पानी होता है जो भगवान ने हमें दिया है, इस जगह के लिए दिया है,
0: हमें बचाना है। तो चलते
1: हमारा घर।
0: चलते अपने कॉल सेंटर का नंबर और वो ईमेल आईडी दोबारा बता दीजिए, और ये कि कैसे लोग खुद को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल भी इससे जुड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत पेचीदा काम नहीं है।
1: बिल्कुल, 2 घंटे 3 घंटा मेहनत करना पड़ता है। किसी को भी इस बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए हो तो waterheroofindia@gmail.com पे मेल कीजिए, आपको इसमें ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स मिलेगा, नंबर्स मिलेंगे, उसको पढ़ लीजिए, फिर हमें फ़ोन कीजिए, हम आपको और भी इसमें डिटेल दे देंगे। एंड प्लस मैं दोबारा बोलूँगा, हमारा जो स्किल डेवलपमेंट कैंपेन चल रहा है पूरे देश में, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में भी इसको आप देख सकते हैं, आप खुद सीखिए, अपने गांव में अपने शहर में ये सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कीजिए, ताकि जिस हिसाब से 7,400 लोग इससे जुड़े हैं, और भी लोग इससे जुड़ जाएं और अपना घर भी इसमें चला पाएं। थैंक यू।
0: सुभजीत जी, ये जो मैटिनी शो के तहत आपसे बातें हुई हैं, अभी मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें बाकी हैं, पर इस हफ्ते के लिए आपसे इजाजत लेते हैं। लेकिन इजाजत लेने से पहले हम चाहते हैं कि अपनी पसंद का एक गाना, बल्कि कहें कि अपनी पसंद के एक गाने की आप फरमाइश करें, हम उसको पूरा करेंगे।
1: एक गाना मुझे हमेशा बहुत प्यारा लगता है जो नेचर से रिलेटेड है,
0: जी
1: एंड मेरी मम्मी भी वो गाती थी, अभी उनका फेवरेट था, अभी तो वो नहीं है, बट मुझे भी बहुत पसंद है। इनफैक्ट
0: जी
1: मैं थोड़ा सा गा दूँ आपके
0: जरूर
1: सामने।
0: जरूर जरूर, स्वागत।
1: हरी हरी व सुंदरा पे नीला नीला ये गगन,
0: वाह वाह,
1: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तो बस ये गाना सुना दीजिए, बहुत दिन हो गए सुने हुए।
0: क्या बात है। बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज, भरत व्यास के बोल और सतीश भाटिया का संगीत,
1: अरे बाप रे
0: सुनते हैं ये
1: बाप।
0: गाना।

0: बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और आगे की बातें करेंगे।
1: थैंक यू जी।
0: चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। तो अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते हम फिर मिल रहे हैं मैटिनी शो में और बातें करेंगे जल है तो कल है की। इक्कीस जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
6: हो तो

0: आती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। यादों की महफिल कार्यक्रम होगा कुछ ही पलों के बाद।
1: एयरोस्पेस ने बनाया है विक्रम एक का यह प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम एक मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये चार चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित

0: सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाईस्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने इस रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आर्म फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्कर आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। अगले कार्यक्रम के लिए कुछ पलों का इंतजार। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
4: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
6: सुनिए।

अमर प्रेम फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना। दिन की इस भागदौड़ में दिन की 12:11 विविध भारती यादों की महफिल।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुनिए।

धड़कन फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में था। विविध भारती से आप सुन रही हैं यादों की महफिल।

अजनबी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आपने सुना आनंद बख्शी की बोल थी आर डी बर्मन की तर्ज थी राजेश खन्ना की याद, यादों की महफिल।

जैसे कि आप जानते हैं, सुरीले सफर कार्यक्रम में हम एक टेक्स्ट पोस्ट करते हैं और उसके जरिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी से जुड़ते हैं और हमारी और आपकी होती हैं बातें और तय होता है कार्यक्रम का एक सफर। आज की इबारत या आज का टेक्स्ट ये है, कभी कभी किया है ऐसे कि बहुत सोचा ये कहना है वो कहेंगे, पर जब कहने का मौका आया तो कुछ नहीं कहते बना, या ये लगा कि छोड़ो अब क्या कहना है। कभी प्रेम पत्र लिखने की हिम्मत की, कुछ तो दिल ने कहा होगा। अपने दिल की बात सुनो, दिल कहता है कह दूं तो बोलो बोलो, नजाकत से कहूं तो चुप रहिए, नजाकत से कहूं तो चुप न रहिए, बोलिए दिल की बातें। तो भाई ये था आज का टेक्स्ट, या ये कहूं कि ये है आज का टेक्स्ट। और बहुत सारे श्रोताओं के बहुत सारे रेस्पॉन्सेज हमें मिले हैं और कई श्रोताओं ने अंदाजा लगाया है कि आज के गाने कौन से हो सकते हैं, आज के शब्द कौन से हो सकते हैं। और कुछ तो लोग कहेंगे, ये एक श्रोता का कमेंट है। एक श्रोता लिखते हैं कि थोड़ी देर पहले राजेश खन्ना को आपने याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता लिखती हैं, कभी कभी ऐसा ही होता है, कुछ कहना चाहो पर बातें मन में रहकर मुंह से नहीं निकल पाती, शायद सुनकर किसी को दुख ना पहुंच जाए, कभी किसी के सम्मान को चोट ना लग जाए। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इंसान सब कुछ भूल सकता है लेकिन अपने मन की उस लाचारी को नहीं भूल सकता जब सब कुछ सामने था पर फिर भी मुट्ठी से फिसल गया, वो एक पल की हिचक उम्र भर का सन्नाटा बन गई। आज जब भी पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि सबसे भारी बोझ उन शब्दों का होता है जिन्हें हम कभी बोल नहीं पाते। बहुत ही बड़ी बात कह गए हैं हमारे श्रोता। एक और श्रोता का ये कमेंट है, बहुत कुछ सोचा था कहने को पर लफ्जों ने जब मोड़ लिया, दिल की बात दिल में ही रह गई या हमने कहना छोड़ दिया। कभी लिखे थे जो खत पन्नों पर वो स्याही आज भी कुछ कहती है, नजाकत से सुनो दिल की धड़कने जो अनकही बात तब भी बहती है, खामोशियों के इस मेले में अब खुद से ही कुछ सवाल कीजिए, जो दिल कहे वो सच बयां कर दीजिए, डरिए मत बस आज कुछ बोलिए। ये हमारे तमाम श्रोताओं के कमेंट्स हैं और आज के इस कार्यक्रम का सिलसिला शुरू करना है। तो चलिए, ये रहा आज का पहला गाना। और अमूमन हमारे इस कार्यक्रम में हम गानों से जुड़े सवाल करते हैं, लेकिन आज क्यों ना बातें करें। हमें बताइए कि कब जिंदगी में ऐसा मौका आया जब कुछ कहना था और कहते नहीं बना, किस किस की जिंदगी में ऐसा मौका आया था। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाइए, सुरीला सफर वाली पोस्ट पर लिख दीजिए ये बात। इस गाने के बाद आप सभी की बातें शामिल करते हैं। कैसे आप अपनी बात नहीं कह पाए या कैसे आपने संकोच छोड़ा और अपनी बात कह दी, दोनों ही बातें लिखी है।

वही पड़ोसन फिल्म का ये गाना एकदम जैसे ही खत्म हुआ ये लगा कि अरे ये गाना तो खत्म हो गया। और अब देखिए कि बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो लगातार विविध भारती के फेसबुक पेज पर अपनी बात लिख रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं सुरीला सफर कार्यक्रम में। वो इस कार्यक्रम के साझीदार बनना चाहते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं। तो सायरा बनो सुनील दत्त, ये एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही शानदार आगाज हुआ है। एक श्रोता का कहना है कि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि वक्त पर बोल नहीं पाती, पर बाद में पछतावा होता है कि ऐसा बोल देती या कह देती। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि लाइफ में कई बार ना कहना कितना मुश्किल होता है, तो मैंने भी नहीं कहा। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि हमारी सगाई के कुछ महीनों बाद पारिवारिक फंक्शन में मेरी होने वाली धर्मपत्नी से अलग से मिलना हुआ था अजमेर शहर में। पहले मैंने सोचा कि मैं ये कहूँगा वो कहूँगा, पर कुछ ना कहकर बस मैंने यही कहा 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा। और वो ये बात सुनकर मुस्कुराई थी। एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत बहुत ही दिलचस्प है। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कह दिया हाले दिल तो एक सुकून पा लिया, खामोशी का वो भारी बोझ दिल से हटा लिया। क्या बात है, क्या हाले दिल कह पाए, अपनी बात कह पाए, या बस दिल की दिल में ही रह गई। किस गीतकार का है ये गाना, यही है आपको बताना। और साथ में ये भी कि आपने कब किसको प्रेम पत्र लिखा था। ये जो लव लेटर लिखने की बात है, जरा आज इस राज को खोल ही दीजिए।

संगम फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के रिस्पॉन्सेज आए हैं हमारे सवाल के जवाब में। एक श्रोता लिखते हैं कि सगाई के बाद अपने होने वाले पति को प्रेम पत्र लिखा था, क्योंकि वो ज़माना ऐसा था जवाब भी आया करता था, और ये ख़त हमने पिछले 28 साल से संभाल कर रखे हैं। एक और श्रोता कहते हैं, ज़िंदगी में हर रोज़ न जाने कितनी बातें हम किसी से कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। और आगे वो लिखते हैं कि जैसे भोलेनाथ ने विष को गले में रख लिया था, वैसे ही कई बातें हम विष समझकर पी लेते हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हमने किसी को लव लेटर लिखा, लेकिन कुछ मित्रों को ज़रूर लव लेटर लिख के देते थे जो हम नहीं लिख सकते थे, उनके जज्बात हम अपनी कलम से लिखते थे। एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि पुराने पन्ने पलटवा रहे हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आज आप सोच कर आए हैं कि हर किसी के छिपे हुए राज निकलवाएंगे। एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि कहना तो चाहते थे, कहा भी, पर लोगों ने सुनी और फिर हमें ऐसा छोड़ा कि जैसे हम कुछ नहीं थे। ये एक श्रोता अपना दुख शेयर कर रहे हैं। एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि लव लेटर लिखा नहीं था, किसी का मिला था, वो भी सांकेतिक भाषा में, क्योंकि वो ज़माना ही ऐसा था। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। ट्यूशन पढ़ते समय उसकी हया भरी नज़रें संग मुस्कान को जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई, ये 50 साल पुराना वाकया है। ये एक श्रोता है, उन्होंने कहा। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं, शादी के बाद जब मायके जाती तब ये सोचती मम्मी पापा से ये कहूँगी वो कहूँगी, पर जब मिलती थी तब न जाने उनकी बातें सुनने में ऐसी रम जाती थी कि बहुत सी बातें

बाद में याद आती थी कि ये कहना था वो कहना था, पर कई बातें कुछ कभी बोल नहीं पाई, पापा नहीं हैं पर कह नहीं पाई बातें। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि कॉलेज लाइफ में जिससे जो कहना था कह नहीं पाए और वो दूर चली गई। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रेम पत्र की बात चली है तो बता देता हूं कि बिफोर मैरिज मैंने भी बहुत सारे प्रेम पत्र लिखे, बहुत सारे प्रेम पत्र लिखे, एक ही को, ये जरा क्लियर कीजिएगा। अभी संभाले हुए हैं, कोई रविवार की मस्तानी शाम को फिर से पढ़ लेते हैं। ये एक श्रोता की बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है, लिखते हैं कि जो दुनिया से चले गए उनसे बहुत कुछ कहना था। और इसके अलावा और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि कहना बहुत कुछ था पर कह नहीं पाए, फिर देर हो गई, कुछ शर्म और कुछ डर रहा। ये तमाम श्रोताओं की बातें। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गाना सुनते हैं। ये आपको बताना है फिल्म का नाम। प्रेम पत्र की बात हुई तो कई लोगों ने जवाब दिए। अब जरा ये बताइएगा कि नॉर्मल चिट्ठी पिछली बार कब और किसको लिखी थी आपने?

अफसोस से कह रहे हैं, क्या बताएं यूनुस जी, किस्मत कुछ ऐसी रही कि श्रीमती जी के अलावा किसी को प्रेम पत्र नहीं लिख पाए। अब श्रीमती जी जब भी मायके जाती थीं तो लिख दिया करते थे, फिर मोबाइल आने पर यह सिलसिला भी खत्म हो गया। इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अब चिट्ठी पत्री का जमाना चला गया है और संदेश बॉक्स के साथ सांकेतिक इमोजी से ही लोग काम चला लेते हैं, और जो समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो उनकी भला से। ये बहुत महत्वपूर्ण बात एक श्रोता ने लिखी है। एक और श्रोता है, लिखते हैं कि चिट्ठी एक बार भी नहीं लिखी लेकिन पोस्ट ऑफिस से पार्सल बहुत सारे पोस्ट किए हैं रिसेंटली। एक श्रोता है जो लिख रहे हैं कि नॉर्मल चिट्ठी लिखे, पिछली बार कब लिखी थी ये तो याद नहीं है, पर पिताजी का लिखा हुआ 1978 का अंतर्देशी मिला, आज पिताजी नहीं है पर ये पत्र मैंने संभाल कर लिखा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उन्होंने आखिरी पत्र जो है वो विविध भारती को लिखा था, बहुत बढ़िया बात। एक और श्रोता ने आखिरी पत्र जो है वो विविध भारती में लिखा था और उनकी इल्तिजा ये है कि मनचाही गीत कार्यक्रम में शामिल किया जाए। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि आजकल ज़माना बदल गया, आज के माँ बाप तो बच्चों की सुन लेते हैं, हमारे ज़माने के माँ बाप कुछ कहते सुनते नहीं थे, उससे पहले उनके हाथ बोलने लगते थे और हम कुछ बोल नहीं पाते थे। कुछ दिल ने कहा ये गाना बहुत सारे श्रोताओं के दिल तक उतरा है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अपने साथी को पहला खत लिखा जो पोस्ट नहीं किया, किसी के द्वारा भिजवाया। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स, एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा एक दोस्त उड़िया था, उसे एक हिंदी भाषी लड़की से प्यार हो गया था, वो मुझसे हिंदी में प्रेम पत्र लिखवाता था, वही पहला प्रेम पत्र था। भाई देखिए, वाया वाया प्रेम पत्र यानी किसी और के लिए लिखे गए प्रेम पत्र की बात है, ये भी बहुत ही दिलचस्प बात है। कुछ और कमेंट्स अगले गाने के बाद शामिल किए जाएंगे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आई थी वो इमोजी की और डिजिटल संवादों की थी, तो यहां बताइएगा कि क्या चिट्ठी पत्री की जगह जो व्हाट्सएप और डिजिटल संवाद ने ले ली है, या जो इमोजी के जरिए संचार है, इमोजी के जरिए अपनी बात कहना है, इसके बारे में आपका क्या राय है, आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, क्या इमोजी सचमुच में आपके जज्बात को सामने वाले तक पहुंचा देते हैं या ये शॉर्टकट तरीका आपको पसंद नहीं। दूसरा, व्हाट्सएप संवादों से ज्यादा आनंद चिट्ठी में आता था या नहीं।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: हो तो

0: है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
1: भाई हमने अपने श्रोताओं से ये पूछा था कि इमोजी के बारे में उनकी क्या राय है, तो बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि पत्र लिखते और पढ़ते वक्त जो भाव मन में आता है वो किसी इमोजी या व्हाट्सएप चैटिंग से नहीं आता, केवल खाना पूर्ति होती है। इसके अलावा एक और श्रोताएं लिखती हैं कि डाकिए का इंतज़ार करना और खत का लिफाफा खोलना, इसमें जो उत्सुकता थी वो किसी डिजिटल नोटिफिकेशन में नहीं हो सकती। इसके अलावा एक और श्रोता का कहना है कि व्हाट्सएप में वो फीलिंग नहीं आती है जो हम लेटर में लिखा करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता का कहना है कि चिट्ठी में जो लिखा जाता है उसमें संवेदनाएं होती हैं, विश्वास होता है, उम्मीद होती है, प्यार होता है। किसी की चिट्ठी जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उससे हम बातें कर रहे हैं, और चिट्ठी पढ़ने के बाद हमारे दिल और दिमाग में एक उथल पुथल आती है जो हमें बेचैन कर देती है, लेकिन व्हाट्सएप और इमोजी में ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं जिसमें हमने कुछ अभी पढ़ा था। इसके अलावा एक और श्रोता है लिख रहे हैं कि इमोजीज का आजकल बहुत अच्छा उपयोग हो गया है, कई बार कुछ भी लिखने के लिए इमोजीज से मन की बात अच्छे से जाहिर हो जाती है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो ब्लैंकली लिख दें तो उसका वो अर्थ ना निकले जो इमोजी के बाद होता है। तो एक श्रोता है जिन्होंने इमोजी का सपोर्ट किया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि हमें इमोजी नहीं पसंद है फिर भी भेजते हैं जल्दी के लिए, वैसे लिखकर संदेश भेजना ज्यादा पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनकी सहेली हमारे कॉलेज के पते पर खत भेजती थी और हमारे खत को पढ़कर उन्हें सुनाती थी। ये बात 57-58 साल पहले की है। एक और श्रोता है जो लिखती है कि आपने ये जो पूछा है इमोजी का, तो इमोजी मुझे अच्छी नहीं लगती, ये फीलिंग बता पाते हैं, आजकल के बच्चों को बता पाते हैं, पर मुझे तो इमोजी से कोई फीलिंग नहीं आती। ये एक श्रोता की बात है। तो भाई बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह से अपने रिस्पॉन्सेज दिए हैं और इमोजी के बारे में अपनी बात कही है। देखिए ये जो कार्यक्रम है सुरीला सफर, इसके बहाने कितने सारे श्रोताओं के ख्यालात हमें पता चले, और लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं ना फेसबुक पर, लगातार ऊपर स्क्रॉल होते रहते हैं। और इसी पल एक श्रोता ने ये लिखा है कि कम ही हमें इमोजी की भाषा समझ में आती है, ना समझी से खुशी की जगह गुस्से वाली इमोजी भेजने से बहुत सारे मित्र हमसे नाराज भी हो गए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि कागज पर लिखी चिट्ठी तकिए के नीचे रखकर सो सकते हैं, पर मोबाइल तकिए के नीचे रखकर कैसे सोएं। चिट्ठी में हम अपने जज्बात उड़ेल देते थे, चिट्ठी में उसका चेहरा देखते थे, जो बात पत्रों में है वो मोबाइल के

मैसेजेस में कहाँ है, कितनी प्यारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। अगर आपने अभी तक अपनी बात नहीं कही है, डिजिटल चिट्ठियां और फिजिकल चिट्ठियां यानी हाथ से लिखी हुई चिट्ठियां या व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए संदेश, इन दोनों में से आप किसे प्रेफर करते हैं? और दूसरी बात, क्या इमोजी सचमुच में अपनी बात कहने का अच्छा जरिया है? ये दोनों बातें बताइएगा। अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं।

भाई ये गाना खत्म हो गया और इतने सारे मैसेजेस इस बीच धड़ाधड़ आए हैं, मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादातर मैसेजेस आपको पढ़ के सुनाऊं। चिट्ठियां दिल की बात शब्दों में पिरोने के लिए वक्त और सब्र मांगती हैं, जो एक गहरी आत्मीयता पैदा करता है। हाथ से लिखी चिट्ठी हमेशा के लिए एक निशानी बन जाती है, जिसे सालों साल सहेज कर रखा जा सकता है। ये

हमारे एक श्रोता की बात है। उसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि पहले चिट्ठी लिखना पढ़ना पर लिखवाने वाले के आंसू और पढ़ते समय भी उनकी रुलाई देखकर अपनी भी रुलाई आती थी। मैं नानी के साथ रहती थी, माँ दूर रहती थी और जब भी नानी अपनी बेटी को पत्र लिखवा रही होती थी तो आधी बात रोते रोते ही लिखी जाती थी और मैं रोते रोते लिखते चली जाती थी। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं, प्रेम पत्र लिखने के बाद जब उसे पहुंचने का नंबर आता था तो रिश्वत भी खिलानी पड़ती थी, बच्चों को आइसक्रीम टॉफी बिस्किट। ओहो हो, ये कहने का मतलब है आपका, मैं समझा। इसके अलावा एक श्रोता है जो ये कह रहे हैं कि आज की छोटी सी इबारत में बहुत कुछ कह दिया है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि इमोजी डिजिटल भाव त्वरित प्रकट कर देते हैं, आजकल के लोगों के पास इतना समय कहाँ है सुनने बताने का, पर पत्र में तो पूरी बात लिखने और बताने का आनंद ही अलग था। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिख रहे हैं कि मैसेज के बीच बीच में इमोजीज यूज करने से वो ज्यादा उपयोगी हो जाता है। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि इमोजी और ऑटो टेक्स्ट दोनों खतरनाक हैं और कई बार अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती में वो हमेशा चिट्ठी लिखते हैं और उनकी शिकायत ये है कि आज तक उनकी चिट्ठी शामिल नहीं हुई है। एक श्रोता ने बहुत ही नॉस्टैल्जिक कर दिया, पहले चिट्ठियां एक तार वाले स्टैंड में घूम कर रखी जाती थी, नीचे लकड़ी का एक गोल सा टुकड़ा रहता था, सारी चिट्ठियां सुरक्षित रहती थी। आज भी हमारे पास 70 साल पुरानी चिट्ठियां संग्रहित हैं, 70 साल, क्या बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इमोजी तो हमें शुरू से समझ नहीं आया और कई बार गलत सलत इमोजी भिज जाते हैं। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पत्र केवल शब्दों का समूह नहीं, दिल की धड़कन आत्मा की प्रतिध्वनि है। जब हम कागज पर कलम चलाते हैं तो हमारी उंगलियों के साथ साथ हमारी भावनाएं भी बहती हैं, पत्र में ठहराव होता है, गहराई होती है जो पढ़ने वाले के दिल को सीधे छूती है। और दूसरी और इमोजी आज के दौर का शॉर्टकट है, भाई शॉर्टकट का जमाना है, ये हमारे तमाम श्रोता एक्सेप्ट कर रहे हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि पहले पत्र लिखने के लिए फूल का फोटो बनाना पड़ता था, चिट्ठियों में परफ्यूम तक डाले जाते थे, ये इमोजी में कहाँ हो सकता है। चिट्ठी छूकर जो निकटता महसूस होती है वो डिजिटल संदेशों से नहीं होती। एक और श्रोता, जज्बात सिर्फ खत से महसूस होते हैं, जब खत पढ़ना शुरू करते थे तो यूं लगता था सामने वाला हमारे सामने खड़े होकर कुछ कह रहा है। कितनी प्यारी बातें, चलिए ये तमाम बातें और उसके बाद ये गाना। आप फिल्म का नाम बताइए।

अदालत फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना, और एक श्रोता ने इसकी एक पंक्ति को कोट किया है, कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया, अब इस पे कयामत है कि हम कुछ नहीं कहते। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आज आपने यादों का पिटारा खोल रखा है जिसमें चिट्ठियों भरा प्यार है, कुछ प्रेम की बातें हैं, कुछ पुराने जज्बात हैं जो हमें सदा जवां रखते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा कि मैंने तो कभी पत्र नहीं लिखा, लेकिन मेरे बड़े पापा हैं वो वायलिन वादक हैं और उन्होंने लता मंगेशकर जी को एक पत्र लिखा था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि रंग बिरंगी इमोजी बहुत सुंदर दिखती हैं और वो आपके संदेशों को अट्रैक्टिव बनाती हैं। तो भाई एक पहलू ये भी है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि एक वक्त था जब लोगों के पास समय बहुत था और भावनाएं अपरंपार थी, चिट्ठियां पोल भी खोलती हैं, अगर किसी की चिट्ठी किसी दूसरे के हाथ पड़ जाए या कोई पुरानी चिट्ठी किसी के हाथ लग जाए तो आपसी संबंध तक खराब हो सकते हैं। ये एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भागदौड़ आपाधापी में किसी के पास समय नहीं है कि वो बैठकर चिट्ठियां पढ़े, इसीलिए सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और इमोजी का सहारा लिया जा रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि आया एक जमाना था जब डाकिया घर पर आता था तो खुशी की लहर दौड़ जाती थी। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज के समय में अजीब लगेगा लेकिन मैं अभी भी दीपावली, न्यू ईयर, ईद और क्रिसमस के ग्रीटिंग कार्ड्स एनवेलप पोस्ट से स्टैंप लगाकर भेजता हूं और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। कितनी प्यारी बात है, ये पुरानी परंपरा को आपने आज तक कायम रखा हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। और तमाम श्रोता जब सुनेंगे तो जाहिर है कि उन्हें भी इससे प्रेरणा मिलेगी। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक जमाना था जब आई लव यू कहने से पहले लोग खत लिखते थे, उस खत में जल्दीबाजी नहीं होती थी, इंतजार, अपनापन और ढेर सारे एहसास होते थे। ये हमारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, तमाम कमेंट्स को शामिल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुख्य मुख्य कमेंट्स को मैं शामिल करता चला जा रहा हूं और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता जा रहा हूं। अब जरा सोचिए कि दिल की बात कहने की जो झिझक है उसे साहिर लुधियानवी ने इस गाने में किस तरह से पिरोया है। फिल्म का नाम आप बताइएगा और साथ में ये कि क्या कभी आपको भी ऐसा लगा कि आज मुझे कुछ कहना है और फिर लगा छोड़ो अब क्या कहना है, यानी आप संकोच संकोच में रह गए।

कितना प्यारा गाना है और कितना सही एक श्रोता ने लिखा है कि किशोरदा का ये गाना जितनी बार सुनो वही किशोरदा के साथ सुधा मल्होत्रा का नाम भी लिखना चाहिए। किशोरदा और सुधा मल्होत्रा का ये गाना जितनी बार सुनो दिल नहीं भरता है। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि मुझे कुछ कहना था पर सोचते सोचते कई बरस लग गए और वो किसी और की हो गई। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने कहा है कि इस गाने के संगीतकार हेमंत कुमार हैं। और एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि क्या ये फिल्म कहीं देखने मिल सकती है, अब ये तो खोज कर बताना पड़ेगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पढ़ाई के दौरान जब अपने किसी खास दोस्त से कुछ बात कहने का दिल में उमड़ घुमड़ होता था, भाई इन्हीं के शब्द हैं कि आज दिल की बात जरूर कहेंगे लेकिन ऐन वक्त पर मन कहता चलो कभी दूसरी बार, मेरे साथ ऐसा ही होता रहा है। ये एक श्रोता की बात। और इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स धड़ाधड़, ये जो मोबाइल की कंप्यूटर की स्क्रीन है ये स्क्रॉल होती चली जा रही है। श्रोता लिख रहे हैं कि हमने कई लोगों के खत भी पढ़कर सुनाए और कुछ लोगों को खत भी लिखे और उन्हें समझाया भी और बातें सुनकर रोए भी वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मैं बचपन से विविध भारती सुनती हूं, मेरी माँ और मेरी दोनों बहनें विविध भारती की फैन हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि आपने पूछ ही लिया है तो आज बता देते हैं, 40 साल पहले की बात है, मेरी दुकान पोस्ट ऑफिस के सामने थी, आज भी है। ससुराल से श्रीमती जी का पत्र आता था, पोस्टमैन मुझे इशारा कर बुलाकर दे देते थे क्योंकि पिताजी जब सामने बैठे होते थे तो शर्माती थी। ठीक है भाई, ये एक बात का खुलासा हुआ। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिनकी बात, एक श्रोता ये लिखते हैं कि विविध भारती ने अब ये मौका दिया है कि हम चिट्ठियों के जरिए अपनी फरमाइशें भेजें तो हम भेज रहे हैं। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि इमोजी के जरिए हम तो अपनी फीलिंग नहीं बता पाते पर हाँ बच्चे जरूर जानते हैं कौन सी इमोजी किस तरह की है और बताते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई इमोजी भेजनी हो और कोई गड़बड़ इमोजी आपने भेज दी हो क्योंकि आपको उसका मतलब ही नहीं पता हो और उसके बाद किसी ने आपको आपकी गलती का एहसास दिलाया और उसके बाद आप बहुत हंसे हो? ये किस फिल्म का गाना है ये आपको बताना है। और तब तक ये जो डिजिटल संदेश है ना, इनमें कई बार ये होता है कि किसी को भेजा जाने वाला संदेश किसी और को भेज दिया जाए।

0: पूछो ना यार क्या हुआ।
1: जमाने को दिखाना है फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के इतने सारे कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता ये लिखते हैं कि एक बार चश्मा लगाया नहीं था तो पता नहीं चला, कुछ का कुछ इमोजी बीच गया, बाद में समझ में आया। भाई ये चश्मा लगाना कितना ज़रूरी है ये इस कमेंट के जरिए पता चल गया। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि कभी कुछ का कुछ बिक जाता है तो गिल्टी फील होता है। और इसके अलावा एक और श्रोता, उन्होंने भी बिल्कुल यही बात लिखी है। और तो बहुत सारे श्रोताओं ने ये कहा है कि भाई आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और बहुत सारी बातें कहने का मौका आप सभी ने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। फिर मिलेंगे, सुनते रहिए विविध भारती, क्योंकि विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। और दिन की इस भागदौड़ में आपको जहां कहीं भी रहना है विविध भारती के संग रहना है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत

0: आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी, और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम वन की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
2: Congratulations in space for facilitating
3: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
2: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी
1: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
4: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में दो दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
1: ये समाचार हमारे newsonair ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत के नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आर फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
5: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
1: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
5: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
1: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम

0: करने का भी संकल्प लिया है।
1: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं, जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हाविएर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अक्षित वैद्यान।
2: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई है। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद

0: फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
1: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी

0: मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: पर आप विविध भारती के संग हैं। सदाबहार नगमे।

हम रही फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। आज है जानी मानी गायिका मुबारक बेगम की याद का दिन।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: हो तो

0: रहती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो हमारी भी सुनो।
1: देवदास फिल्म का गीत मुबारक बेगम की आवाज, गीत साहिर लुधियानवी का, संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
3: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज जो पहला गाना है वो आप सभी की फरमाइश पर वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे, छबड़ा जिला 12 राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो, राजस्थान जोधपुर से अशोक प्रेमलता और सुमित बाणिया, और ये चिट्ठी है पंचगवहाण उबारखेड़ से साहिबराव वेड़कर, अमोल मिस्त्री और आनंद निहां। इसके अलावा उल्लासनगर से पुरुषोत्तम और ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर, और पतरोड़ा गंगानगर राजस्थान से मंगल जनागल राही, रोशनी जनागल, अंकुर और डॉक्टर सुनील जनागल। आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम की पहली पेशकश है मुकेश की आवाज में पूर्णिमा फिल्म का गाना गुलजार के बोल कल्याण।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ज्वेल थीफ से है, लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं, सचिन देव बर्मन का संगीत, और आप सभी की फरमाइश है। श्री गंगानगर से निकी राम बांसीवाल, जॉनी बांसीवाल और धनराज बांसीवाल, हावड़ा नाजिरगंज नेपाली पारा से हमारे कुछ श्रोता हैं, दीपक, स्वीटी, उषा, ज्योति, किरण, दिर्शा और रितेश लिंबू और इनका पूरा परिवार, ये हावड़ा से। इसके अलावा घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, वंदना नगर इंदौर से ललिता नारायण खर्चे, संजना परी खर्चे, गणेश खर्चे, दीपिका, स्वाति और प्रयाग चौधरी, और ये फरमाइश है रेखा, पूजा, नंदिनी, बबीता, शोभा रघुवंशी, स्वाति, इन सब की इंदौर से। राजस्थान जोधपुर से इन श्रोताओं का नाम पहले हो चुका है। तो सुनिए ज्वेल की फिल्म का ये गाना।

विविध भारती से आप सुन रही हैं मनचाही गीत कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में श्रोता हमें लिखते हैं तमाम देशभर से चिट्ठियां, और इन चिट्ठियों के जरिए हम ये जान पाते हैं कि कहां कहां श्रोता हमें सुन रहे हैं और कौन कौन से गानों की फरमाइश करना चाहते हैं। ये पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता और रिमझिम गुप्ता की चिट्ठी, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती जासमीन और प्रयागराज, पाहरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंदोर, चंद्रकांत, प्रीति और छाया, छत्तीसगढ़ बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, रुद्र कुमार सारथी, वीरेंद्र कांत सारथी और ब्रजकांत सारथी, और इसके अलावा ये फरमाइश जालना से डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अशोक भूतेकर, गणेश और कार्तिक भूतेकर। बहुत ही सुंदर लेखनी में श्रोताओं की ये चिट्ठियां। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना, शर्मीली फिल्म का गीत नीरज के बोल।

मुंजाहिद कार्यक्रम की अगली पेशकश जो है वो उसकी फरमाइश आप सभी ने भेजी है। बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, राजा राम नगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, सलोजी महाजन और चीकू, ये चिट्ठी आई है खोखरिया बनाड रोड सूर्य नगरी जोधपुर से जबर सिंह फूल वाले रुद्राक्ष मानू दिनेश सोढ़ा देवेंद्र सिंह की और राजेश जैन अरुणा जैन दीपक जैन गौतम बिट्टू मट्टू सारिका बनिता मनोज जैन और समता जैन ने हमें लुधियाना के मोहलापुर दंबा मंडी से चिट्ठी लिखी है। वारंगा फाटा से वैष्णवी मोरे अश्विन मोरे कुंडलीक और पांडुरंग मोरे की चिट्ठी है और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा बिमला अनेजा की चिट्ठी। सितमगर फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और कीजिएगा सितमगर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में

और अब कार्यक्रम का अगला गाना जो धरती फिल्म से है, फरमाइश करने वाले श्रोता हैं सुकोडा रोडा को, लासी गजानन, कुंभार पद्मावती, विशाल ज्योति और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा बड़वाहा से अयांश रावल, पुष्पेंद्र और इंदिरा रावल, चांदुर बिस्वा से राम भाऊ, लक्ष्मण भाऊ, भारत, शत्रुघ्न नारायण, पंच गवहाण तेलहारा से साहेब राव, अमोल खालिक और इनके साथी, शेगांव से मोहम्मद अनीस मुहाल, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद रिजवान। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें। हस्त जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन की तर्ज है।

0: चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहेगी।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हेलो हेलो नानी।
1: हाँ गुड़िया।
0: अरे हाँ हाँ मैं गुड़िया ही बोल रही हूँ, मुझे पता था आपका फोन आएगा।
1: हाँ अच्छा अच्छा जल्दी बता वो आया कि नहीं।
0: अरे रुकिए मैं खिड़की के पास ही जा रही हूँ, खिड़की तो खोलने दीजिए। हाँ अब बोलिए नानी, आपकी टाइम की सेंस बड़ी परफेक्ट है।
1: नानी किसकी हूँ?
0: आपका फोन आया, मैंने खिड़की खोली और मैं नीचे देख रही हूँ कि भूरे भी अपने ठिकाने पहुँच गया है।
1: अरे गुड़िया तो खिड़की पर आ भी गई फिर भी सामने वाले फ्लाईओवर का शोर नहीं सुनाई दे रहा।
0: ओ फो नानी आप भूल गई लगता है, लॉकडाउन चल रहा है भाई, पूरा सन्नाटा पसरा है, शोर कैसे आएगा।
1: अरे बेटा मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि भूरे का डिनर हुआ कि नहीं।
0: आप भी ना नानी, डिनर तो हम करेंगे थोड़ी देर में। उफ, ये मैं क्या बोले जा रही हूँ, वैसे आप ठीक ही कह रही हैं, भूरे भी तो डिनर ही करेगा ना रात में, अब भले दूध भात खाए या रोटी।
1: आज क्या मिल रहा है उसे, क्या लाया बेरा, दूध भात की ब्रेड?
0: आप उसे बेरा क्यों कह रही हैं? अरे वो तो उजला फरिश्ता है, रोज शाम अपने साथ भूरे के लिए पानी और खाना लाता है।
1: देखो गुड़िया खाना जो बनाए वो खानसामा और जो खाना परोसे वो बेरा ही हुआ ना। अच्छा ये बता तू उसे उजला फरिश्ता क्यों कह रही है?
0: अरे नानी वो इसलिए कि या तो वो व्हाइट टी शर्ट पहन के आता है या उसकी टी शर्ट में थोड़ा बहुत व्हाइट कलर होता जरूर है, और काम काम तो वो एंजल जैसा ही करता है, तो हुआ ना उजला फरिश्ता।
1: बड़ी खोज खबर रखती है रे तू उसकी है?
0: हाँ और पता है दादी क्या कहती है, वो कपड़े उजले पहनता है उसका मन भी उजला है, तभी तो हर रोज भूरे के लिए खाना लेकर आता है। पता है नानी बारिश हो तो भी आता है, और दादी ने ही उसे ये नाम दिया है उजला फरिश्ता, इनोसेंट एनिमल्स की हेल्प करने वाला एक एंजल।
1: अच्छा अच्छा अच्छा मेरी बातों की दादी, अब ये बता आया कि नहीं तेरा उजला फरिश्ता?
0: अभी तक तो नहीं आया नानी, पता है नीचे भूरे भी इंतजार में बैठा है।
2: अरे गुड़िया बेटा गुड़िया आ जाओ बेटा, तुम लोग सब लोग खाना खाने के लिए तैयार हो गया, खाना टाइम हो गया।
0: ओके ओके मम्मा। अच्छा नानी नीचे भूरा खाने की वेट कर रहा है और यहाँ हमारे डिनर की भी कॉल आ गई, तो आपको बाकी रिपोर्टिंग में खाना खाने के बाद दूंगी। ओके बाय
1: बाय बेटा।
2: सब लोग
0: वाओ रायता माय फेवरेट। मम्मी और ये इतने बड़े डोंगे में आपने क्या ढक के रखा है, मैं देख लूं खोल के?
2: हाँ हाँ देखो देखो।
0: उफ, ये क्या, ये तो चावल दिख रहे हैं
2: जी,
0: और कैरेट, कैप्सिकम भी, ओ नो बीट रूट, और वो भी इतने चिपके।

0: चिपके से। मम्मी ये बिरयानी है या खिचड़ी, वो भी बीट रूट वाली, या कौन खाएगा?
1: गुड़िया, लॉकडाउन में खाना मिल रहा है, शुक्र मनाओ।
2: वाह, ये चावल तो मेरे हिसाब से बने हैं, चबाने की जरूरत नहीं है।
3: लाइए भाई, हम भी तो चकले थोड़ा सा।
0: मम्मी आप कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी?
1: जिसने बनाया है ना उन्हीं से पूछो तुम।
0: ओ नो, दैट मींस आज कुकिंग फिर पापा ने की है?
1: यस।
2: जिससे जो आता है वही तो करेगा। तेरे बाप से झाड़ू पोछा नहीं लगता, न ये कपड़े धो पाता है न बर्तन, अब तेरी माँ भला कितना खटेगी। बेचारा खाना बना देता है, वरना मर्दों को सिर्फ हुक्म देने की आदत होती है। हाँ
3: अम्मा, एक तुम ही हो मेरी पार्टी में बस। हाँ। ये गुड़िया तो विरोधी पार्टी में चली गई लगती है, इससे तो सिर्फ गलतियाँ निकालना आता है।
0: क्या पापा?
1: अरे आप बस करिए ना गुड़िया बेटा, लाओ मैं तुम्हारे लिए पराठा बना देती हूँ, आज बेटा।
3: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, विरोधियों और असंतुष्टों को अपनी तरफ करने का अच्छा पैतरा है।
1: जी हाँ वो तो है।
3: खाओ खाओ पराठे खाओ, वजन बढ़ाओ, हमें क्या है। बाद में मत कहने की पापा सूर्य नमस्कार नहीं हो रहा है।
1: तो आगे शुरू, बस करिए। हाँ नहीं तो एक दिन खा लेने से कुछ नहीं होता।
3: अच्छा सच में?
1: हाँ
3: तो एक हमारे लिए भी बना दो।
1: अम्मा अम्मा देख लीजिए, अब आप देख रही है ना।
2: हाँ।
1: अपने लाडले से अपना खुद का बनाया खाया नहीं जा रहा है खाना, और आप उन्हीं की साइड ले रही
2: हैं। अरे बहू, हम सब एक ही साइड में हैं, तू फिकर मत कर। अरे गुड़िया, ए गुड़िया तू ये बता, तेरी नानी क्या कह रही थी रे?
0: अरे दादी पता है उनको भूरे की इतनी फिकर होती है, इतनी फिकर होती है ना, कि रोज शाम को जब तक उसके खाने की पूरी रिपोर्ट नहीं ले लेती उन्हें चैन ही नहीं पड़ता।
2: अच्छा तो तू उन्हें पूरी खबर देती है?
0: और नहीं तो क्या, भूरे की स्टोरी है ही इतनी वंडरफुल।
2: अच्छा कैसे? लेकिन
0: आपको पता तो है सारी कहानी नानी।
2: अरे पर मैं भूल जाती हूँ ना रे, तू अपने नानी को जैसे प्यार से सुनाती है ना, वैसे ही जरा प्यार से मुझे भी सुनाना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है रे।
0: अच्छा तो सुनिए, वो हमारी लाइफ में मेरे कमरे की खिड़की से आया।
2: खिड़की से आया? कमरे की खिड़की से? अरे हम 12वीं मंजिल पर रहते हैं, खिड़की से कैसे बुलाया?
0: ओहो दादी आपको कहानी सुननी है ना।
2: हाँ हाँ सुना सुना सुना।
0: हाँ तो खिड़की के नीचे, ठीक नीचे वो जो फ्लाईओवर है ना,
2: हाँ
0: वहाँ वो रोज शाम को आता है। दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, रात को कहाँ सोता है ये भी नहीं पता।
2: अरे तो तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की?
0: ओहो दादी लॉकडाउन में नीचे उतरना अलाउड नहीं है, तो फाइंड आउट कैसे करूंगी? हम तो बस खिड़की से ही देखकर खुश हो लेते हैं।
2: अरे इसमें खुश होने की क्या बात है?
1: अम्मा अम्मा आपको कहानी सुनना है ना, तो बस सुनिए जो कह रही है गुड़िया।
2: हाँ हम तो सुन ही रहे हैं बहू, सुन रहे हैं।
0: हाँ तो शाम को जब डॉगी फ्लाई ओवर पर पहुँच जाता है ना, तो थोड़ी देर में एक पर्सन आता है, वही आपका उजला फरिश्ता।
2: हाँ।
0: और भूरे को कुछ खाने को देता है
2: रोज,
0: और नहीं तो क्या।
2: अच्छा
0: हम तो डेली देखते हैं और इसी की रिपोर्टिंग तो नानी को करते हैं।
3: अम्मा इस कुत्ते को पहली दफा गुड़िया और इसकी माँ नहीं देखा था, अब देखा क्या था, मदद की शुरुआत भी इसी ने की थी अम्मा।
0: हाँ रहता हमसे दूर है लेकिन है तो हमारे फैमिली मेंबर जैसा ही।
2: हाँ हाँ कुछ तो बताया था तुम लोगों ने, अब याद नहीं।
3: गुड़िया याद करो यार, वो रात कैसी थी है?
1: हाँ।
3: हम घंटों खिड़की से देखते रहे, लैंप पोस्ट के आसपास वो कभी इधर उधर चलता, कभी बैठ जाता, कभी खड़ा हो जाता, खड़ा रहता तो न जाने कितनी देर तक एक ही जगह पर खड़ा रहता। लॉकडाउन शुरू हुए अभी, क्यों अभी 3-4 दिन हुए थे।
1: हाँ, बस इसी समय की तो बात है।
3: दहशत फैली हुई थी, ट्रैफिक बहुत कम था, फिर भी कोई स्कूटर वाला निकलता तो कुत्ता उसकी ओर लपकने लगता। अरे साफ लग रहा था कि वो किसी का सहारा ढूंढ रहा है।
1: हाँ ये बात तो है, लेकिन कितने डरावने दिन थे, दुकान बंद, दफ्तर बंद, लोगों का आना जाना बंद, और मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि भाई मेरा किचन कैसे चलेगा। और हाँ देखिए आप भी तो जानते ही हैं, हम लोग कभी राशन तो जमा करके हमने रखा ही नहीं था, तो चिंता लगी।
0: ओ मम्मा भूरे की बात बताइए ना।
1: हाँ हाँ अब खिड़की से देखते देखते अम्मा कई घंटे बीत गए। एक तो ऐसी ये सुनसान जगह, पैदल कोई आता ही जाता नहीं, और दोनों तरफ इतने बड़े दानवादार टावर, और बीच में इतना चौड़ा 4 लेन वाला फ्लाईओवर, इतने बड़े महानगर के इस फ्लाईओवर के दोनों तरफ के टावरों में अम्मा 1000-2000 फ्लैट तो होंगे।

0: पर इनके ठीक नाक के नीचे सूखी नदी जैसा फ्लाईओवर, जहां न आदम न आदम चाट। और पहले तो दिन भर बरसाती नदी की तरह ट्रैफिक से भरा रहता था, पर लॉकडाउन में तो जैसे भूतों का डेरा बन गया है। हमें तो लग रहा था कि ये बेचारा बिद्दू सा तो है, इतनी अकेली जगह पे भटक कर पहुंच गया, और अब उसे यही नहीं पता चल रहा था क्यों जी कि कहाँ जाए, कैसे करें और कैसे बस्ती में पहुंचे।
1: ए बहू, तू भी क्या क्या बोले जा रही है।
0: हाँ अम्मा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जरा सोचिए, सोचिए जरा सा, ये 30-30 मंजिला पर्वत खड़े हैं धरती की छाती पर इनके अंदर की दुनिया कोई और ही है। इन्हें जमीन नहीं दिखाई देती, बस काम से काम रखते हैं इसमें रहने वाले। अम्मा
1: बहू, हम भी तो ऐसे ही टावर में रहते हैं ना।
0: हाँ तो अम्मा, हम भी तो उनके ही जैसे हैं ना, हम भी तो में सिमटे रहते हैं।
1: हाँ।
0: पर उस दिन, हाँ अम्मा, उस दिन न जाने कैसे हमारी भी नजर नीचे झुक गई, वरना दोनों तरफ के टावर में लोग ही लोग हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिखाई पड़ा, बस हमें दिख गया ये बेचारा।
2: अरे हो सकता है और भी लोगों ने देखा हो, पर हिम्मत ना पड़ी हो कुछ करने की। अब तुम्हें याद है ना, हम भी तो घंटों देखते रह गए थे उसको।
0: हाँ वो तो है, लेकिन हमें भी तो नहीं समझ में आ रहा था ना कि क्या करें, कैसे करें, कैसे इस पिल्ले को पुचकारें, बचाएं और कैसे लेके आए। और याद है ना, यहाँ से कैसे हमने ब्रेड का टुकड़ा फेंका था।
2: हाँ।
0: लेकिन वहाँ कैसे पहुँचता, इतनी दूर था।
2: तब अम्मा हमारी इस गुड़िया ने ही आइडिया दिया।
1: हाँ? क्या, घर लाने का?
2: अरे नहीं अम्मा, घर लाए होते तो मालूम नहीं चलता क्या। अरे जाकर उसे कुछ देने का, और इसने मुझे अकेले जाने भी नहीं दिया, क्यों याद है ना तुम्हें?
0: हाँ, हाँ,
2: हाँ, गुड़िया बिल्कुल? उस रात क्या हुआ था याद है?
3: पापा, पापा, पापा!
2: अरे क्या है बेटा, क्या हो गया?
3: पापा जल्दी इधर आइए, जल्दी आइए तो।
2: अरे क्या है बताओ
3: पापा,
2: तो
3: पापा देखिए ना, वो नीचे बेचारा कितना टायर्ड और हंगरी लग रहा है। आई थिंक ही इज लॉस्ट।
2: हाँ, भूखा और परेशान है, लगता कहीं से भटक के आ गया।
3: यहाँ से देखते रहने से कुछ नहीं होगा, वी मस्ट डू समथिंग।
2: अरे हम क्या कर सकते हैं भाई?
3: पापा क्या हम उस बेचारे पपी को कुछ खाने को दे आए, प्लीज पापा।
2: इस समय लॉकडाउन में?
3: प्लीज पापा।
2: बेटा कर्फ्यू लगा हुआ है, रात का टाइम है, नहीं जा नहीं सकते।
3: अरे पापा ठीक कह रहे हैं, कुछ नहीं होगा मामा, कुछ नहीं होगा। अब देखिए तो, पता नहीं कितने दिन से भूखा है, बेचारा मर जाएगा।
2: देखते हैं भूखा तो है, सोचने दो।
0: हाँ।
2: अच्छा एक काम करते हैं, अब मैं चला जाता हूँ। हाँ, कुछ हाँ, दे आऊंगा ठीक है। तुम एक काम करो, कुछ ब्रेड व्रेड पड़े हो तो दे दो कुछ।
0: हाँ हाँ मैं बिल्कुल देती हूँ। मैं ऐसा करते हैं कि पानी भी दे दी ले जाइए और ये बिस्किट भी ले जाइए, है ना।
2: हाँ।
0: और लेकिन रुके रुके रुके, ऐसा करती हूँ मैं रोटी बना के लाती हूँ फटाफट। है लीजिए ये सामान, हमने सब थैले में रख दिया ठीक है। ये देखिए पानी है ना, और रोटी, दोनों चीजें हैं, और ये सामान रख दिया है, उसको पानी वानी पिला दीजिएगा। और मास्क कहाँ है आपका?
2: अरे हाँ लगा लिया है।
0: सैनिटाइजर रखिए भाई।
2: अरे रखा है भाई।
3: अरे रुकिए रुकिए, अरे मुझे भी तो जाना है, मुझे उसे पास से लेना है।
0: अरे भाई तुम वहाँ क्या करोगे?
2: अरे कह रही है तो जाने दो ना यार,
0: कमाल है आप तो।
2: तुम डरोगी तो नहीं ना?
3: नहीं नहीं पापा बिल्कुल नहीं।
2: हाँ चल चल चल,
0: मतलब डरोगी नहीं, ये क्या है
3: मम्मा प्लीज।
2: चलो चलो चलो, लिफ्ट बुलाओ और तुम दरवाजा बंद कर लेना अंदर।
3: हाँ हाँ पापा आइए।
4: कृपया दरवाजा बंद।
2: अच्छा ठीक है, दरवाजा ठीक से बंद करना।
0: ठीक है ध्यान रखना अपना।
4: तो कृपया दरवाजा बंद कीजिए।
0: अम्मा
1: हम्म,
0: ये लीजिए, आप ऐसा करिए दवा ले लीजिए सोने के पहले वाली, और ये हल्दी वाला दूध भी पी लीजिए।
1: बहू क्या बात है, बड़ी हड़बड़ी में दिख रही है, बाहर ये आवाजें कैसी आ रही थी बहू?
0: अरे वो बाप बेटी नीचे गए ना अम्मा। अरे अम्मा आप दूध पी के सो जाइए
1: इतनी रात को। लेकिन क्या हुआ, सब ठीक तो है ना बहू?
0: अरे अम्मा आप फिक्र मत कीजिए, दूध पीजिए और सो जाइए, वो लोग आ जाएंगे।
1: पता नहीं यहाँ क्या क्या चलता रहता है।
0: मैं सोचती हूँ खिड़की के पास जाकर देखती हूँ, पता नहीं पहुंचे कि नहीं वो लोग। हाँ तो पेड़ बीच में आ रहा है, लगता है अभी पहुंचे नहीं। क्या करूँ, बड़ी चिंता। मैं सोचती फोन कर लेती हूँ।

0: हेलो, अरे तो फोन ही नहीं उठा। हेलो हेलो गुड़िया,
1: हेलो। हाँ मम्मा।
0: तुम लोग अभी तक पहुंचे ही नहीं।
1: अरे मम्मा, उड़कर थोड़ी ना पहुंच जाएंगे, पैदल चल रहे हैं भाई। और
0: अच्छा
1: पता है, मेन गेट पर सिक्योरिटी वाले बाहर ही नहीं जाने दे रहे थे।
0: क्यों बोला?
1: कितना समझाना पड़ा उन्हें, और आज बाहर हवा भी चल रही है
0: हवा?
1: और सड़क पर बहुत सारे डॉग्स हैं मम्मी, सब इधर से उधर दौड़ रहे हैं। अच्छा आप फोन रखिए।
2: লাপানা পড়া নাতুম মুম্বাই স্টেশন মেন পাই থাক পন বিবিধ ভারতীয় জ্যামেক আর জু এক লং টাংল লাগে আকাশবাণী ডিপু নন স্টুডিও ঘুরি আনি আসাম পরফাগে তোমরা মিনিট ফ্লিকের অফ প্লেং টাংল লাসে ননানা তোমার জুগ লং পো গুয়াহাটি স্টেশন কার্বি আংডিং পাই থাক পন আসন আসন কার্বি জ্যামেক

아륜투 알로나람테 럭리 럭리 라방소미 아르직스나 이노페나 생랭롱 마닉티 수펜킬롱 라방소룬

0: बोरो लोनबारी में जामिया के लापान से कंग तोने लो लाके आकाशवाणी डिपो आदन तू जामे एक नॉन मलम सो पिलते नाना तुम आर्चिक लोंग पा
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: लाके आकाशवाणी रिपो नॉन आर्थिक से नंग रंग रूप अजाय मेक रंग रूप अजाय मेक लंग नॉन आना तुम्हारे जो लंग पों प्लास्टिक अरिपेन बैग का सलामा बुटा संग पे संग ऐतब भी पीला पेन हुड बैंग हुना लेटरन पियंग पों जी हो चिपोट तो तंते आर्थिक से नंग

वर्षा के मी चु एंदुनिक था लद्दाख आकाशवाणी दिफुअलंग आसन आसन का पचे थांग वर साइडो लबांग सुंग बंग माई मीटिंग पांगरी पांग दोन महांग के थे किथी के जांग के जोर के नाम कुलारा की मिकांगपू हेम की मिकांगपू चुजुन चमांकान रोंग केयर आरोंग अजे बिहू क्रिसमस निंकान की मिया हिरजुमी लपेन अनपार्टा कप्रेक आसन आसन आलाम पचे थांग जी लिपुते लद्दाख आकाशवाणी दिफुअलंग नंगहुमरी इक्तामी मोबाइल पेंजों से चिंकी इक ची पुलोते मोबाइल नंबर के 9476880085 लापेन 9101008242 हेनलो

लके आकाश भने रिपो नन आर्जुक छैन कार्बे लोन बारे मजा मेघ लोन बारे मजा मेघ लन आन तुम्हारुक लंग पो वो के प्लांग आलन किलोन जी बांग सोदार इंग लबांग सोजा मेघ पिनी सिने तुम किरोटे पर पंचेंग लंग तो दांते आर्जुक छैन

ताजुपुरंदम चीनम सिबंग सर्वसंगायं पीचिंग नंगी प्लंग।

लोन बारे में जाए मैं एकलांग नॉन है डांग तुम वो के प्लांग लोन आर जी कलंग डांग लो किलो ने बांग सौदा रंग डेंग लबांग सो जाए मैं एक पीनी से नीरे तुम

ब्रदर पजु पंचेंग ना तो दांते लुनबारे में जाए मैं कलों नॉन चिंताओं रंग हां मान पेंग के आलोन ले आर्जुक से ना किलो ने बांग जनसिंह टिसाओ

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने

0: एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लके आकाशवाणी रिपोर्ट। नॉन आर्जुक सिंह लामजर अजय मेहक। लामजर अजय मेहक लो नॉन अलग तुम आर्जुक लोग पो मुनीत आकाय लपेन साइंस लबांसो पुटर लामठे की तंजी बैंग ब्रिटिश एनसीपी

0: ए पोके लाइन लो डायरेक्टर एन लो प्रोड्यूसर एन लो कैमरामैन एन लो लातुम लम काई तार जुनिंग लातुम लम अर्जुलो बोलते तुम अंगसोंग डमिली दुनुन पो लापेन लक्वान मा कारजु ब्लान लो तुम ता अंगसोंग दुन थेगी डायरेक्टर रुम ता कोआन मा इतुम हान लाना बा थेगी फान के बोरि पिगलो ताई तुम जों अर्जु बि बेदर लो बते तुम मा नंबा थेक ता तुम तदर पो डायरेक्टर रुम ता नसे के नंग सोर बैंक इतुंग डायरेक्टर फान से के चार डम नंगी के नंग सोर लापेन अलार्म कारजु इते नंग ता के नंग सोर
1: अहोग अलार्म लो लापेन चुरु लो नंगली अपर्णा चिपी पेन लामार जान का चिपार जान लामो नांगली ला रेडियो नांकार जुदुन के दो आना तुम फान का पाचिनी पद थेली तुम गाचे थानांग जी के दो लांग सचा मे पिनी के अपर चौक टांगलो पद से इली तुम चिहु चिपोदा जाय मे के लापो आन लेंग टन कोकलो ना मो अपर मे सेना हुद ले लान सो से चिंकी चे थान थुइगलो ना दो मे थक मे कार्डम
0: कार्डम
2: Pini elam jira jame ke la panse kang tonek lo. La ke akai shwani dipu.

0: जहालत है, जो नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं है लानत है। जन्म से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान।
1: लके आकाशवाणी रिफो नॉन स्टूडियो गोरे आने यूट्यूब पर फाइट रखरा मिनट प्लेकर पा प्लेन जी डंग डंग लाला से नॉन मलम चो पीलते नाला तुम्हार जो डंग पा गुवाहाटी पे न पैटा आसामी सलाम पे नितान पन आंतुलेक बतरे मते लोंगरे लंगपात अभिर्ता।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

0: जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी। गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: लगे आकाशवाणी रिपो नॉन आर्थिक सिंह ऑक्टन अजय मेघ ऑक्टन अजय मेघ लॉन्ग नॉन आना तुम आर्थिक लॉन्ग पो क्रोनिक ओटिटिस मीडिया माते इनु किसो लबांग सुआ किसो पुथाक डॉक्टर गीता तिमुंग पिलापेन हुडबांग सिंकान केमी इंटिपियांग पांग जीहु चिपोट।

शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है, इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज

0: थिंग्स डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
1: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
2: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजय लक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
3: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
4: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित

0: रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम वन में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। यह अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम वन से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
2: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमेरिका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसेलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसेलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसेलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंताएं बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में एक व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा HD कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग 1 दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं

0: के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस्ड। Yami Gautam wins Best Actress Award for Article 370, Mammootty for Brahma Yugam and Kartik Aaryan for Chandur Champion share Best Actor Award. 20 rebel TMC MPs who joined National Citizens Party of India get Lok Sabha Speaker's approval for separate seating in the House. Massive fire at a firecracker factory in Ahmedabad claims 5 lives. Prime Minister Narendra Modi expresses grief. US-Iran fighting over Strait of Hormuz escalates with attacks on key infrastructure and military targets. Olympic medalists Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain to be India's flag and baton bearers at opening ceremony of Commonwealth Games in Glasgow. And in FIFA World Cup, France to clash with England for third place at Miami Stadium tonight. Hindi film Article 370 has won the Best Film Award in the 72nd National Film Awards. Announcing the awards today in New Delhi this evening, Chairman of Jury Feature Film Jairaj said Mammootty and Kartik Aaryan have won the National Film Awards in Best Actor category for their movie.